0: numbers carry weight beyond what you see. Q11700, the master number of Vedic tradition, a heritage Queensland plate, first issued in 1922, a piece of Queensland history with full provenance, owned outright, transfer ready. For the buyer who understands that the number you carry is a statement of who you are, Q Plate Sales. Inquire at qplatesales.com.au. It's not just a number, it's a statement.
1: इंडियन फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है. यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट्स एंड सूट्स. यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस. इतना ही नहीं, ओरिजिनल डीवीडी, सीडीज, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है. फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशंस विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा, ओपन daily from 9 a.m. Telephone Rani Creations on 3391-0622 or visit their webpage ranicreations.com. The one-stop Bollywood fashion and entertainment store, well known for its quality service and reasonable prices.

बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।

0: आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है। मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता, लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करें प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660 0415-952-660।
1: हनी, ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
2: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड।
1: ऐसा क्या खास है वहाँ?
2: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम्ब, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
1: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
2: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड, सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818। दैट्स 3804-3818।
3: करें

वहमो गुमान से दूर दूर, यकीन की हद के पास पास, दिल को भरम ये हो गया उनको हमसे प्यार है।

0: अनुज, कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने, समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
1: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
0: अरे वाह, इनका पता बताना।
1: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शोग्राउंड्स, ऑफिस 5, 1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com। We pride ourselves in providing excellent service.
2: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
3: यार, I'm so worried. I actually want an experienced lawyer to handle my case.
2: मेरी advice है, go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का vast experience है और law की entry cases को handle करने में उनकी expertise है. Criminal law, domestic offence, traffic drug offence में 12 साल से ज्यादा का rich experience. और तो और conveyance, family law, immigration laws में भी भारद्वाज and associates के lawyers का vast experience है. And the best point, they understand the stress that you go through and work effectively to minimize it.
3: Thanks, Atanya. I'm so relaxed to hear that.
2: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.

0: मेरा नाम डॉक्टर कुमार है और यहाँ कुछ ऐसा है जिसे जानना अच्छा है। एक नया नेशनल लंग कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ है। ये सरल है, निशुल्क है और ये लक्षणों के सामने आने से पहले ही लंग कैंसर का पता लगा सकता है। यदि आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो हो सकता है कि आप ये सोचें कि बहुत देर हो चुकी है या इसके बारे में ना जानना ही बेहतर है। लेकिन क्या आपको पता है कि फेफड़ों की कैंसर की शुरुआत में पता लगाए गए 65% से अधिक मामलों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है। यदि आप 50 से 70 वर्ष की आयु के हैं और आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो अपने डॉक्टर से बात करें या lungcancerscreen.org.au पर जाएं।
1: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है। सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
2: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
1: अच्छा, वो क्या?
2: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
1: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
2: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।

ना बदला मैं ना बदला वो ना बदला तू, अगर कुछ बदला है तो सिर्फ कमबख्त ये वक्त है बदला। पहले था कबूतर अब है ट्विटर, पहले थी बुक अब है फेसबुक, पहले था टेलीग्राम अब है इंस्टा।

0: ब्रिस्बेन, क्या आप एक धमाकेदार शाम के लिए तैयार हैं? ऑस्ट्रेलिया में पहली बार रिनाउंड डिवोशनल सिंगर निखार जुनेजा ला रहे हैं भजन जामिंग का अमेजिंग एक्सपीरियंस खास ब्रिस्बेन के लिए। म्यूजिक, डिवोशन, पॉजिटिविटी और कनेक्शन से भरी इस शाम को हजारों आवाजें मिलकर बनाएंगी एक शानदार एक्सपीरियंस। फ्राइडे 30th अक्टूबर 2026, डोर विल ओपन एट 6 PM एट शैंडलर थिएटर, कॉर्नर ऑफ ओल्ड क्लीवलैंड रोड एंड टली रोड, शैंडलर। सबसे खास बात, ये सिर्फ एक म्यूजिकल इवेंट नहीं, एक मीनिंगफुल कॉज भी है। ऑर्गेनाइज बाय सिंपली ह्यूमन सुपर हीरोज विदाउट केप्स, जो कैंसर पेशेंट्स और उनकी फैमिलीज को सपोर्ट कर रहे हैं। हर टिकट परचेज इस ब्यूटीफुल इनिशिएटिव को सपोर्ट करेगा। प्राउड पार्टनर स्वदेश फूड्स एंड स्पेशल थैंक्स टू सेलिब्रिटी पार्टनर शौर्य एंटरटेनमेंट। निखार जुनेजा, अ जर्नी विद इन, एक शाम भजन, भक्ति और स्पिरिचुअलिटी के नाम।
1: उसी आराम की गली में तुम जाना, वहां नाचते मिलेंगे हनुमाना।
0: टिकट्स ऑन सेल नाउ एट premiertickets.co। स्पॉन्सरशिप्स, पार्टनरशिप्स और ज्यादा जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट प्रेरणा ऑन 04302280009। प्राउडली स्पॉन्सर्ड बाय ऑजीज माइग्रेशन एंड एजुकेशन एंड पावर्ड बाय स्वदेश फूड्स। कम फॉर द म्यूजिक, स्टे फॉर द पर्पस, लीव इंस्पायर्ड।
2: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता, कल को इमरजेंसी हो जाए तो।
3: तूने ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाइप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
2: सीरियसली, मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड।
3: बिल्कुल, ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम, इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए? ओम्स ऑर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in। व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 8448381360। ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, जहाँ केयर का मतलब है रियल केयर।

0: भाई मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
1: तो उमसॉक से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
0: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
1: अरे उमसॉग एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
0: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
1: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
0: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
1: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448 381 360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई। ओमसॉक, केयरिंग विद डिग्निटी।
2: क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270035 पर, या फिर उनसे मिलिए Level 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स, एंगेजमेंट्स, रिन्यूअल ऑफ वाउस और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर, हॉल या पार्क में, बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270035। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270035, या फिर ईमेल करे permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस, कंप्लीट लीगल पेपरवर्क, मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी, रिमेंबर द नेम परमानंद, ये प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003।

0: मैं चाहती हूँ इस बार फंक्शन में बेस्ट ज्वेलरी मैं ही पहनूं, पर कहाँ से खरीदूं पता ही नहीं। आई एम सो कंफ्यूज्ड।
1: अरे इसमें कंफ्यूजन क्या, प्रिंस ज्वेलर्स ब्रिस्बेन क्वींसलैंड में, जो गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी के स्पेशलिस्ट हैं। दे आर इन बिजनेस सिंस 1992। यहाँ अवेलेबल हैं डायमंड नेकलेसेस, बैंगल्स, रिंग्स, इयररिंग्स, गोल्ड एंड सिल्वर कॉइंस। साथ ही ज्वेलरी और वॉच रिपेयर भी होती है।
0: Wow, तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व। पर एड्रेस?
1: At Shop 9B, Sunnybank Hills Shopping Town, corner of Kurlam and 661 Crompton Road, Sunnybank Hills, Queensland 4109. For all your jewelry needs, contact 3273-7365. That's 3273-7365. Or email princejewelers@bigpond.com. Family business built on trust.
2: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
3: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
2: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
3: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड प्योर देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं, 100% प्योर क्रीम से, 99.9% प्योर मिल्क फैट से, और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
2: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
3: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
4: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400664435 पर। याद रहे 0400664435 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
5: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है, सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।

0: Some numbers carry weight beyond what you see. Q11700, the master number of Vedic tradition, a heritage Queensland plate, first issued in 1922, a piece of Queensland history with full provenance, owned outright, transfer ready. For the buyer who understands that the number you carry is a statement of who you are, Q Plate Sales. Inquire at qplatesales.com.au. It's not just a number, it's a statement.
1: इंडियन फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है. यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट्स एंड सूट्स. यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस. इतना ही नहीं, ओरिजिनल डीवीडी, सीडीज, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्टवेयर भी उपलब्ध है. फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशंस विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा, ओपन daily from 9 a.m. Telephone Rani Creations on 3391-0622 or visit their webpage ranicreations.com. The one-stop Bollywood fashion and entertainment store, well known for its quality service and reasonable prices.

0: क्या बात है जुबिन, बैक टू बैक सुपर हिट्स, पर लड़की किसी में नहीं मिलती है। ये हाल सिर्फ वीडियो में ही है या रियल लाइफ में भी?
1: ये दिल ऐसी गलती नहीं करता।

बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।

0: आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है। मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता, लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करें प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660 0415-952-660।
1: हनी, ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
2: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड।
1: ऐसा क्या खास है वहाँ?
2: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम्ब, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
1: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
2: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड, सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818। दैट्स 3804-3818।

0: रेडियो 79.1 जिसके द्वारा आप हर रोज हमारे हिंदुस्तानी कार्यक्रम को सुनते हैं। याद रहे हमारा टेलीफोन नंबर है 3279-1701।
1: दोस्तों आप सुन रहे हैं आपके अपनी पहचान रेडियो विश्वानी 1701। हमारे स्टूडियोज में ठीक ब्रिस्बेन टाइम 1:00 बज चुके हैं।

हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं आपकी अपनी पहचान रेडियो विस्वानी 1701 हमारे स्टूडियो 17 मार्स रॉक्स ब्रिस्बेन से। रेडियो विस्वानी पर हमारे स्टूडियोज में ब्रिस्बेन टाइम ठीक एक बज चुके हैं। आप कहीं भी है किसी भी हाल में हमें सुन रहे, स्वागत है आप सभी का रेडियो विस्वानी AM से। जी हाँ, आज आपके साथ सु एक बार फिर। जो लोग आज पहली बार हमारे साथ जुड़े हैं, आपका स्वागत है। रेडियो विस्वानी 24/7 आप सुन सकते हैं। तो आप सभी को पता है ना कि आज क्या है? जी हाँ, आज शनिवार है, मस्त दिन है ना, इसीलिए शनिवार मस्ती म्यूजिक लेकर हम उपस्थित हुए हैं। ना किसी से पूछने की जरूरत, शनिवार की हवा कुछ अलग आहट देती है। पूरे हफ्ते की थकान उतारने के लिए शनिवार का दिन सभी को बेबरसी से इंतजार रहता है। सभी को पता है कल रविवार है, नॉट USA? आपको तो और खुशी होगी ना, क्योंकि आज फ्राइडे नाइट है। तो शनिवार बस आराम के नाम ही रहता है दोस्तों। ना काम की चिंता, ना कल की गम कोई, बस आज खुद के नाम शनिवार। एक बार फिर आज ही शनिवार प्यारी से एक दिन हो गई है, जिंदगी की फिजा खुशनवाब हो गई है। मुबारक हो आप सबको आज का ये दिन जिसमें शामिल हो गई है आप सभी की दुआएं। हैप्पी वीकेंड एवरीवन। इसके साथ साथ हम ये कहना चाहते हैं कि आज अगर आपकी शादी की सालगिरह है, आज आपकी जन्मदिन है, कुछ भी सेलिब्रेशन आप कर रहे हैं, कांग्रेचुलेशंस हमारी तरफ से, बहुत सारी सी बधाइयां। रेडियो विस्वानी टीम की ओर से आप सभी को बहुत सारी सी बधाइयां। अगर आज अनाउंसमेंट करना चाहते हैं रेडियो विस्वानी द्वारा, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं 3279-1701 पर, या नहीं तो आप हमारे मोबाइल पर SMS कर सकते हैं। आज आपकी अनाउंसर सु। खुशखबरी, हमारे पास आज दो बर्थडे अनाउंसमेंट है, इंतजार करते रहिएगा। देखिए आज कौन कौन से लोग अपनी जन्मदिन मना रहे हैं।

0: ਨਵੀਂ ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ 4000 ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਲਈ 53,500 ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਘਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅ ਪਲੇਸ ਟੂ ਕਾਲ ਹੋਮ ਖੋਜੋ। ਵਧੇਰੇ ਕਿਫਾਇਤੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਧੇਰੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਨਵੀਂ ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ $2 ਬਿਲੀਅਨ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਭਰ ਵਿੱਚ 98,000 ਨਵੇਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਅ ਪਲੇਸ ਟੂ ਕਾਲ ਹੋਮ ਖੋਜੋ।
1: बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।

0: Excuse me, may I? Some matches are made in heaven and some are made at weddings. Every wedding is special. Think weddings, think Roy Singh. From the grand ballroom to your childhood backyard to a faraway beach, the big day comes in all sizes and styles, and that is why I'm proud that you have trusted me with your civil wedding, and I cannot wait to help you create yours. Contact me, Roy Singh, today on 0411-022-602, 0411-022-602, or email me at roylindrasingh@gmail.com. Think weddings, think Roy Singh.
1: जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं आपकी अपनी पहचान रेडियो विस्वानी 1701, और समय हुआ हमारे स्टूडियोज में 13 मिनट हो गए 1:00। चलते हैं आज का पहला पेडियो अनाउंसमेंट हम लेकर आ रहे हैं, क्योंकि वहां पर बहुत से लोग जो है बहुत एक्साइटेड है और बेड अनाउंसमेंट सुनना चाहते हैं। पारी ओन है और कौन है आज पहले हमारे जो सबसे पहले जन्मदिन अनाउंसमेंट है, बर्थडे अनाउंसमेंट है, मरम्बा डांस की विनी सिंह आज अपनी जन्मदिन मना रही है। मरम्बा डांस में नहीं, लेकिन कहां पर, गोल्ड कोस्ट में अपने हस्बैंड क्रिस के साथ। और विनी कॉन्ग्रेचुलेशंस, हम यही कहना चाहते हैं हैप्पी बर्थडे, मैनी मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे विनी। आप एंजॉय कर रही हैं, बहुत अच्छी बात है, रियली आप बहुत एंजॉयबल पर्सन है, अच्छा लगता है, हमेशा हंसती रहती है। तो चले विनी, देखे आपको बहुत सारे से लोग आपको प्यार बधाइयां भेज रहे हैं, हस्बैंड क्रिस की तरफ से बहुत सारे से प्यार ही प्यार मिले हैं, साथ में सिस्टर्स प्रवीणा, सिस्टर सुनीता, और साथ में सिस्टर अनिता, सरिता, ब्रदर्स इन लॉज, ब्रदर इन लॉज जिमी, बॉब, और नेफ्यूज नवनीत, नीस शालीन, और शिवानी, साथ में गौतम, सोफिया एंड फैमिली, और साथ साथ में ऑल द फ्रेंड्स एंड फैमिली फ्रॉम ब्रिस्बेन एंड अब्रॉड। विनी, हम आपको यही कहना चाहते हैं कि जैसे आप हमेशा हंसती रहती है ना, हंसते रहे आप करोड़ों के बीच, खिलते रहे आप लाखों के बीच, रोशन रहे आप हजारों के बीच, जैसे रहता है चांद सितारों के बीच, और देखे कि खुशियों से भर जाए आपके आने वाला हर कल, आपकी जिंदगी में सुख रहे हर पल। विनी, हम ये कहना चाहते हैं आपको कि हो पूरे दिल की हर ख्वाहिश आपकी, और मिले खुशियां का जहां आपको। अगर आप मांगे आसमान से एक तारा, तो ऊपर वाला दे दे सारा आसमां को। हैप्पी बर्थडे, मेनी मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे विनी फ्रॉम रेडियो विस्वानी टीम। चलते हैं आपके लिए एक प्यारा सा गीत।

0: And once again, Vinny, we all wish you a very, very happy birthday. और जी हाँ दोस्तों, अगर आपने मिस ही कर दिया है, आज मरम्बा डांस की विनी सिंह अपनी बर्थडे मना रही है गोल्ड कोस्ट में अपने हस्बैंड क्रिस के साथ, साथ साथ में उनके सिस्टर्स प्रवीणा ने याद किया है, बहुत सारे से प्यार भेजे हैं, बहन सुनीता है, बहन अनीता और सरिता, ब्रदर इन लॉज जिमी बॉब, नेफ्यूज नवनीत, कनीज शालीन, शिवम, गौतम, सोफिया एंड फैमिली, और साथ साथ में ऑल द फ्रेंड्स फ्रॉम ब्रिस्बेन अराउंड हियर एंड अब्रॉड. वंस अगेन हैव अ नाइस डे विनी, एंजॉय योर डे.
1: नवी क्वींसलैंड सरकार 4000 हेक्टेयर तो भी वध जमीन रिहायश लई उपलब्ध करवा रही है अते लोड़वंदा लई 53,500 समाजिक अते कम्युनिटी घर मुहैया करवा रही है. अ प्लेस टू कॉल होम खोजो.
2: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं, अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता, कल को इमरजेंसी हो जाए तो.
3: तूने ओम्स और असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाइप्स के साथ. फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं.
2: सीरियसली? मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड.
3: बिल्कुल. ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया. ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड ऑल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स. अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए. ओम्स ऑर्ग, स्पेल्ड OMSORG. वेबसाइट omsorg.co.in. व्हाट्सएप या कॉल कीजिए. इंडिया नंबर 8448381360. ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर.
0: चलते हैं आगे बढ़ते हुए दोस्तों, बहुत सारे से रिक्वेस्ट की लाइन लगी है हमारे पास. हम चलते हैं ग्रीन एकर सिडनी की ओर. हमारे साथ जुड़े हैं वहां पर रजिन और मालती प्रसाद. आप दोनों के लिए पेशी अगला गीत. शनिवार मस्ती म्यूजिक रेडियो विश्वनीयम.

सबको मालूम है, सबको खबर हो गई। बहुत प्यारा से गीत हमारे साथ शामिल हो गए थे रजनी मालती प्रसाद, जो हमें सुन रहे ग्रीन एकर सिडनी में। आप सुन रहे हैं रेडियो विस्वानी, आपकी अपनी पहचाने हैं शनिवार मस्ती म्यूजिक। मस्ती म्यूजिक में हमारे साथ शामिल हो गए मैक्स प्रसाद फ्रॉम कैलिफोर्निया USA। Join me every Saturdays from 1 p.m. on Shanivar Masti Music on Radio Vispani AM.

0: कंसिडर द सो इस गीत में हमारे साथ शामिल हो गए थे मैक्स प्रसाद जो हमें सुन रहे हैं कैलिफोर्निया यूएसए में. आप सुन रहे हैं आपकी अपनी पहचान रेडियो विश्वानी 1701.
1: वधेरे किफायती रिहायश की शुरुआत वधेरे घरां दी उपलब्धता नाल हुंदी है. इसे लई नवी क्वींसलैंड सरकार सूबे भर विच 98,000 तो भी वध नवे घरां दे निर्माण दा राह खोल रही है. असी होर घर जल्दी बनाउण लई बुनियादी ढांचे विच $2 बिलियन दा निवेश कर रहे हां. असी रिहायश लई 4100 हेक्टेयर तो वध जमीन उपलब्ध करवा दिती है. अते लोड़वंदां लई 53,500 समाजिक अते कम्युनिटी घर मुहैया करवा रहे हां. इस तो अलावा होर भी योजनावां तैयार हन. अ प्लेस टू कॉल होम खोजो.
2: क्या आपकी शादी होने वाली है तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270035 पर या फिर उनसे मिलिए Level 1, 33 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में. फॉर वेडिंग्स एंगेजमेंट्स रिन्यूअल ऑफ वाउज और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर हॉल या पार्क में बुक विद परमानंद. कॉल नाउ ऑन 04111270035. रिमेम्बर द नंबर इज 04111270035 या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर. फॉर बेस्ट सर्विस कंप्लीट लीगल पेपर वर्क मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी रिमेम्बर द नेम परमानंद ये प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003.
3: मैं चाहती हूँ इस बार फंक्शन में बेस्ट ज्वेलरी मैं ही पहनूं, पर कहाँ से खरीदूं पता ही नहीं. आई एम सो कंफ्यूज्ड.
4: अरे इसमें कंफ्यूजन क्या, प्रिंस ज्वेलर्स ब्रिस्बेन क्वींसलैंड में जो गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी के स्पेशलिस्ट हैं. दे आर इन बिजनेस सिंस 1992. यहाँ अवेलेबल हैं डायमंड नेकलेसेस, बैंगल्स, रिंग्स, इयररिंग्स, गोल्ड एंड सिल्वर कॉइंस. साथ ही ज्वेलरी और वॉच रिपेयर भी होती है.
3: वाओ, तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व. पर एड्रेस?
4: एट शॉप 9B सनीबैंक हिल्स शॉपिंग टाउन कॉर्नर ऑफ कर्लम एंड 661 क्रॉम्पटन रोड सनीबैंक हिल्स क्वींसलैंड 4109. फॉर ऑल योर ज्वेलरी नीड्स कॉन्टैक्ट 3273-7365. दैट्स 3273-7365 और ईमेल princejewelers@bigpond.com. फैमिली बिजनेस बिल्ट ऑन ट्रस्ट.
1: क्वींसलैंड की नवी सरकार ब्रिस्बेन लई वड्डे काम पूरे कर रही है. असी 50 सेंट दे किराए पक्के तौर उते लागू कर दिते हन. असी होर भी वध डॉक्टर मुहैया करवा रहे हां अते प्रिंस चार्ल्स अते रॉयल ब्रिस्बेन वर्गे हस्पतालां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां. 1600 होर पुलिसकर्मी अते होर सख्त कानून लिया रहे हां. स्थानीय स्कूल अते खेड क्लबां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां. नाल ही 2032 अते उस तो भी अग्गे दे समय वास्ते एक नवी खेड इमारत जिस विच एक नेशनल एक्वाटिक सेंटर अते एथलीट विले शामिल हन जो के अग्गे चल के रिहायश लई वरती जावेगी. असी तुहाडे लई होर की मुहैया करवा रहे हां इस बारे जानो. डिलीवरिंग फॉर क्वींसलैंड सर्च करो. क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन.
0: दोस्तों हम चलते हैं लास वेगास की ओर. हमारे साथ जुड़ी है लास वेगास से दक्षा सोलंकी. दक्षा चलते हैं आपके लिए पेशे अनदर सॉन्ग. इस गीत को मैंने लिया है डैडी पिक्चर से.

अच्छा फिल्म डैडी पिक्चर से लिया हुआ गीत आपने सुना। डीजे रिमिक्स पर इस गीत को मैंने लिया था और हमारे साथ शामिल हो गई थी, हमारा प्रोग्राम सुन रही है लेस वेगस में दक्षा सोलंकी। आप सुन रहे हैं आपकी अपनी पहचान रेडियो विस्वानी 1701। और दोस्तों बस आपका हमारा समय रहेगा ठीक 3 बजे तक, लेकिन हाँ हम तो आपको ये भी कहना भूल गए थे कि लॉन्ग वीकेंड है। So I hope everyone's enjoying a beautiful long weekend here. तो चलते हैं अगला गीत की फरमाइश है हमारे पास, हम चलते हैं सैक्रामेंटो USA की ओर, और जहाँ पर हमें सुन रहे हैं बहुत देर से विजयन जी। अब विजयन बिल्कुल ही चटनी में मस्त है और आप सुनना चाहते हैं कोई चटनी गीत, आपके लिए बिल्कुल ही चटनी गीत।

दोस्तों, इस गीत को फरमाइश करने वाले थे विजयन, जो हमें सुन रहे हैं सैक्रामेंटो यूएसए में। थोड़ी देर के लिए हमें इस गीत को यहाँ पर स्टॉप करना पड़ेगा क्योंकि हमारे स्टूडियोज में कुछ यहाँ पर इंटरनेट प्रॉब्लम है। हम कोशिश करेंगे थोड़ी देर में इस गीत को आपके लिए जरूर फिर से एक बार लाने के लिए, लेकिन हम चलते हैं अगला गीत की ओर, हम बढ़ते हैं। और अगला गीत की फरमाइश हमारे पास आई है ऑकलैंड न्यूजीलैंड से, और जहाँ पर हमें सुन रही हैं निर्मा लाल। जी हाँ, निर्मा लाल हमारा प्रोग्राम सुन रही हैं वहाँ एल्बनी ऑकलैंड न्यूजीलैंड में। और आप अगला गीत जो है डेडिकेट कर रही है अपने सिस्टर उलंगेबा ब्रिस्बेन में सविता को, और कहना चाहती है शी मिसेस यू। और आपके लिए सविता जी अगला डेडिकेशन है आपकी सिस्टर निर्मा लाल की ओर से फ्रॉम न्यूजीलैंड।

0: अच्छा दोस्तों, इस गीत के लिए हमारे पास फरमाइश आई थी वहाँ एल्बनी ऑकलैंड न्यूजीलैंड से, जहाँ मैं सुन रही हूँ निर्मा लाल। और आज निर्मा ने इस गीत को डेडिकेट किया था अपनी बहन सविता को, जो यहाँ ब्रिस्बेन ओलंगेबा में हमें सुन रही हैं, अपना बहुत सारा सब प्यार भेज रही हैं। आप सुन रहे हैं रेडियो विस्वानी, आपकी अपनी पहचान। समय हुआ दोस्तों हमारे स्टूडियोज में ब्रिस्बेन टाइम 12:45 यानी कि 2:45 बज चुके हैं।
1: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है, सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
2: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है, मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
1: अच्छा, वो क्या?
2: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
1: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
2: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।
3: वधेरे किफायती रिहायश की शुरुआत वधेरे घरां दी उपलब्धता नाल हुंदी है, इसे लई नवी क्वींसलैंड सरकार बुनियादी ढांचे विच $2 बिलियन दा निवेश कर रही है, ਤਾਂ ਜੋ ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਭਰ ਵਿੱਚ 98,000 ਨਵੇਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਅ ਪਲੇਸ ਟੂ ਕਾਲ ਹੋਮ ਖੋਜੋ।
4: यार, साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
5: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
4: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
5: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड प्योर देसी घी मिलते हैं, ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं, 100% प्योर क्रीम से, 99.9% प्योर मिल्क फैट से, और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
4: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ, मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
5: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
6: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 04006644355 पर।

0: याद रहे 0400644 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
1: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।
2: चलते हैं विजयन जी, आपने चटनी गीत की रिक्वेस्ट किया था, एक बार फिर हम शुरू करते हैं इस गीत को, शायद इस बार पूरे बजाय। जस्ट कीप योर फिंगर्स क्रॉस।

0: जी लगता है शायद ये गीत नहीं आज बजने वाली है, माफ कीजिएगा।
1: सांसों की माला पे सिमरूं मैं।
2: ब्रिस्बेन, क्या आप एक धमाकेदार शाम के लिए तैयार हैं? ऑस्ट्रेलिया में पहली बार रिनाउंड डिवोशनल सिंगर निखार जुनेजा ला रहे हैं भजन जानिंग का अमेजिंग एक्सपीरियंस खास ब्रिस्बेन के लिए। म्यूजिक, डिवोशन, पॉजिटिविटी और कनेक्शन से भरी इस शाम को हजारों आवाजें मिलकर बनाएंगी एक शानदार एक्सपीरियंस। फ्राइडे 30 अक्टूबर 2026, डोर विल ओपन एट 6 PM एट शैंडलर थिएटर, कॉर्नर ऑफ ओल्ड क्लीवलैंड रोड एंड टली रोड, शैंडलर। सबसे खास बात, ये सिर्फ एक म्यूजिकल इवेंट नहीं, एक मीनिंगफुल कॉज भी है। ऑर्गेनाइज बाय सिंपली ह्यूमन सुपर हीरोज विदाउट केप्स, जो कैंसर पेशेंट्स और उनकी फैमिलीज को सपोर्ट कर रहे हैं। हर टिकट परचेज इस ब्यूटीफुल इनिशिएटिव को सपोर्ट करेगा। प्राउड पार्टनर स्वदेश फूड्स एंड स्पेशल थैंक्स टू सेलिब्रिटी पार्टनर शौर्य एंटरटेनमेंट। निखार जुनेजा, अ जर्नी विद इन, एक शाम भजन, भक्ति और स्पिरिचुअलिटी के नाम।
1: उसी आराम की गली में तुम जाना, वहां नाचते मिलेंगे हनुमाना।
2: टिकट्स ऑन सेल नाउ एट premiertickets.co। स्पॉन्सरशिप्स, पार्टनरशिप्स और ज्यादा जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट प्रेरणा ऑन 04302280009। प्राउडली स्पॉन्सर्ड बाय ऑजीज माइग्रेशन एंड एजुकेशन एंड पावर्ड बाय स्वदेश फूड्स। कम फॉर द म्यूजिक, स्टे फॉर द पर्पस, लीव इंस्पायर्ड।
0: और दोस्तों, हम बढ़ते हैं केडरोन पार्क की ओर। फरमाइश है हमारे पास केडरोन पार्क से जोनी और सविता की ओर से, तो आप दोनों के लिए पेश है अगला गीत, सुनते हैं।

0: आशिकी के।
1: बस एक सनम चाहिए आशिकी के लिए। फिल्म आशिकी से लेवा गीत कुमार सानू की आवाज में आपने सुना। पर्दे पर राहुल रॉय के लिए रेडियो विस्पानी पर इस गीत को फरमाइश किया जोनी और सविता फ्रॉम केरोन पा।
0: आशिकी के लिए, आशिकी के लिए।
2: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है। सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे। ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
3: अच्छा, वो क्या?
2: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
3: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
2: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।
4: क्वींसलैंड की नवी सरकार ब्रिस्बेन लई वड्डे काम पूरे कर रही है। असी 50 सेंट दे किराए पक्के तौर उते लागू कर दिते हन। असी होर भी वल डॉक्टर मुहैया करवा रहे हां अते प्रिंस चार्ल्स अते रॉयल ब्रिस्बेन वर्गे हस्पतालां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। 1600 होर पुलिस कर्मी अते होर सख्त कानून लिया रहे हां। स्थानीय स्कूल अते खेड क्लबां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। नाल ही 2032 अते उस तो भी अग्गे दे समय वास्ते एक नवी खेड इमारत जिस विच एक नेशनल एक्वाटिक सेंटर अते एथलीट विलेज शामिल हन, जो के अग्गे चल के रिहायश लई वरती जावेगी। असी तुहाडे लई होर की मुहैया करवा रहे हां, इस बारे जानो। डिलीवरिंग फॉर क्वींसलैंड सर्च करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित, ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।
5: Are you ready to stop renting and thinking about owning one? Or maybe an investor looking to invest? Then think no more, and it is time to build your future in upcoming house and land packages available in Oxley, Breckenridge, Moggill and surrounding areas in Brisbane, Queensland. It is the great Australian dream. Homes built strong, smart and built to last. If you are ready to make the move, then don't wait till tomorrow. Call agent John Lawla on 0404-004-899. Yes, it's 0404-004-899. And quote code word Briswani. Your new home waiting for you in Oxley, Breckenridge, Moggill and surrounding areas in Brisbane, Queensland.
6: Hi, this is Amitabh Bachchan.
7: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी।
8: Hi guys, I'm Manmeet from the Meet Brothers. आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी।
9: Hi, this is Salman Khan.
10: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी।
11: Hi, this is Deepika Padukone. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी।
12: To everyone tuning into Radio Briswani, this is Alia.
13: Hi, मैं हूँ तुलसी कुमार और आप मुझे सुन रहे हैं Radio Briswani से।
14: To everyone tuning into Radio Briswani, this is Shahrukh Khan.
15: Hi, this is Ajay Devgan और आप सुन रहे हैं Radio Briswani.
1: And I'm Sue, आप सुन रहे हैं रेडियो विस्पानी। हम चलते हैं दोस्तों सेक्रामेंटो USA की ओर, और हमारे पास फरमाइश आई है सूजी नारायण की ओर से, हमें वहां सुन रही है। हाय सूजी, चलते हैं आपके लिए स्पेशल अगला गीत।

0: ना समझे वो अनाड़ी है। बहुत प्यारा से गीत। और दोस्तों हमारे साथ इस गीत में शामिल हो गए थे सूजी नारायण फ्रॉम कैलिफोर्निया, सॉरी फ्रॉम सैक्रामेंटो यूएसए।
1: हनी ये तुम कहाँ ले जा रही हो, ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
2: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड।
1: ऐसा क्या खास है वहाँ?
2: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम्ब, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
1: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
2: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818। दैट्स 3804-3818।
3: आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है, मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता। लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करें प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660 0415-952-660।
0: तो चलते हैं सैक्रामेंटो यूएसए को और विजयन और कामनी। जी हाँ, विजयन और कामनी हमारा प्रोग्राम वहां पर सुन रहे हैं। आप दोनों की रिक्वेस्ट पर सुनते हैं अगला गीत।

0: beautiful song. Jyada so jise farmaish karne wale the Sacramento, USA se Vijayan aur Kamini.
1: Yaar Rahul, tere case ka kya hua?
2: Yaar, I'm so worried. I actually want an experienced lawyer to handle my case.
1: Meri advice hai, go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का वास्ट एक्सपीरियंस है और लॉ की एंट्री केसेस को हैंडल करने में उनकी एक्सपर्टीज है. क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक ऑफेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस में 12 साल से ज्यादा का रिच एक्सपीरियंस, और तो और कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज में भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स के लॉयर्स का वास्ट एक्सपीरियंस है. एंड द बेस्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली टू मिनिमाइज इट.
2: थैंक्स अटनियर, आई एम सो रिलैक्स्ड टू हियर दैट.
1: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
3: भाई, मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार. हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं.
4: तो उमसॉक से बात कर. इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से.
3: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
4: अरे, उमसॉर्ग एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है.
3: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
4: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो.
3: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी.
4: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है. भारत में नंबर +91 8448 381360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801. प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई.
5: ओमसॉक, केयरिंग विद डिग्निटी.
6: क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04-341-27035 पर, या फिर उनसे मिलिए Level 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में. फॉर वेडिंग्स, एंगेजमेंट्स, रिन्यूअल ऑफ वाउज और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर, हॉल या पार्क में, बुक विद परमानंद. कॉल नाउ ऑन 04-341-27035. रिमेम्बर, द नंबर इज 04-341-27035, या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर. फॉर बेस्ट सर्विस, कंप्लीट लीगल पेपरवर्क, मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी, रिमेम्बर द नेम परमानंद, ये प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003.
0: चलिए दोस्तों, जैसे मैंने पहले कहा था कि हमारे पास आज एक और बर्थडे अनाउंसमेंट है. अगर आपकी भी आज बर्थडे है, आप सभी को हम यहाँ से बहुत सारे से मुबारकबादी भेज रहे हैं. हैप्पी बर्थडे कहना चाहते हैं, एनिवर्सरी भी है, कुछ भी है, तो रेडियो विजवानी की ओर से हम आप सभी को आज याद कर रहे हैं. समय हुआ हमारे स्टूडियोज में 14 मिनट हो गए हैं 2:00. हम चलते हैं स्टेफर्ड हाइट्स की ओर, जी नॉर्थ साइड. स्टेफर्ड हाइट्स में करिश्मा बापिप्टूजी आज अपनी बर्थडे मना रही है. और वो कौन है? माय यंगर सिस्टर. जी हाँ, मेरी छोटी बहन करिश्मा आज अपनी जन्मदिन मना रही है अपने बेटे नॉल के साथ और हस्बैंड केवन और साथ में केली और टू लिटिल डॉगी के साथ कहीं पर आज उनकी सरप्राइज लेकर गए हैं. हैप्पी बर्थडे मेरी बहना. हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि सबसे अलग है मेरी बहना, सबसे प्यारी है मेरी बहना. कौन कहता है खुशियाँ ही सब होती है जहाँ में? मेरे लिए तो खुशियों से अनमोल है मेरी बहना. तुम मुस्कुराती रहो हमेशा जिंदगी सारी, ऐसी दिल से दुआ है हमारी. जिंदगी सदा महकती रहे तुम्हारी, रहे हर सुबह और शाम तुम्हारी. मेरी प्यारी बहना, आसमान पर सितारे हैं उतनी जिंदगी हो तेरी जितनी, किसी की नजर ना लगे दुनिया की, हर खुशी मिल जाए आपको. और आज आपको याद किया है हमारे जितने भी परिवार है फ्रॉम ब्रिस्बेन अब्रॉड, और खास करके हमारी दूसरी बहन है प्रमिला और उनके परिवार विनय, रोनील, प्रणीता एंड राया, क्रिस्टीन एंड राया फ्रॉम अमेरिका में हमें सुन रहे हैं लॉस एंजलिस में. साथ साथ में पीजी से हमारे भाई है हाइमेश और उनके परिवार, वीरेन और उनके फैमिली, और साथ में अरमेश और उनकी देविका उनके परिवार, जो मेरी छोटी भाभी भी है, वो भी रेडियो अनाउंसर है पीजी में. हम आपको बता दें देविका, अगर आप रेडियो नवतरंग सुनते हैं, रेडियो मिर्ची में उन अनाउंसिंग करती है. और साथ साथ में मेरी छोटी बहन राज, उनके परिवार की ओर से बहुत सारे से प्यार और बधाई दुआएं मिले हैं. हैप्पी बर्थडे करिश्मा, मैनी मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे हमारी तरफ से, हमारी सारी परिवार की ओर से, सभी भाइयों बहनों की ओर से और हमारी टीम रेडियो वाणी की ओर से.

0: कहना चाहते हैं हैप्पी बर्थडे टू अवर सिस्टर करिश्मा, जो आज अपनी बर्थडे मना रही है नॉर्थ साइड स्टेफर्ड हाइट्स में अपने हस्बैंड केवन और बेटा नॉल केली के साथ विद टू लिटिल डॉगीज की सरप्राइज। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग, सॉरी आज मैं नहीं, आई कुडंट मेक इट। तो एंजॉय योर डे व्हाटएवर यू डूइंग। और साथ साथ में पीजी से मोनिशल और प्रिया भी अपना प्यार और हैप्पी बर्थडे विशेस भेज रहे हैं आपको। साथ साथ में मैंने जैसे पहले कहा कि हमारे जितने भी रिश्तेदार हैं, हमारे सभी भाई बहन हैं, सिस्टर प्रमिला विनय, साथ में नीज क्रिस्टीन राया रोनील फ्रॉम एलआई से भेज रहे हैं अपना प्यार आशीर्वाद। और फिजी से हमारे भाई वीरेन और उनके परिवार है, हाइमिश एंड फैमिली और अरमेश और उनके परिवार, सिस्टर राज उनके फैमिली की ओर से हमारी तरफ से भी हैप्पी बर्थडे। और हमला सिंह, थैंक यू फॉर योर बेस्ट रिगार्ड्स। आप सुन रहे हैं रेडियो विस्वानी।
1: हनी, ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
2: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड।
1: ऐसा क्या खास है वहाँ?
2: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम्ब, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
1: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
2: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड, सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818। दैट्स 3804-3818।
3: आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है, मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता। लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट, फ्री ऑफ चार्ज। रिंग करे प्रकाश मेनन को, फोन 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660 0415-952-660।
0: और याद रहे दोस्तों, आज हमारा आपका साथ रहेगा ठीक 3 बजे तक। है शनिवार, मस्ती म्यूजिक रेडियो विस्वानी AM। अगर आपने अभी ट्यून किया है, स्वागत है आप सभी का। और हाँ, अगर आपको पता नहीं है दोस्तों, तो ब्रिस्बेन में लॉन्ग वीकेंड भी है, लोग बहुत रिलैक्स हो गए हैं, अच्छी लगती है लॉन्ग वीकेंड मिलता है ना। तो एक बार और है दोस्तों हमारे अनाउंसमेंट, टुमारो रॉय सिंह प्रोग्राम पर नहीं आने वाले हैं, इसलिए आपका हमारा साथ होगा 12:30 से। आप खुल के मन भर के हमें जो भी गीत फरमाइश करना चाहते हैं कर सकते हैं, टुमारो फ्रॉम 12:30। और आज देखिए, अगला गीत के लिए हमारे पास फरमाइश आई है और फरमाइश करने वाली है आमला सिंह फ्रॉम शिकागो।

0: बहुत प्यारा सर, गेट ब्यूटीफुल सॉन्ग। आमला जी, आपकी जो चॉइस है बहुत अच्छी है। आपने सुना महेंद्र कपूर आशा भोसले की आवाज में इस गीत को फरमाइश किया था आमला सिंह, जो हमें सुन रही हैं शिकागो में।
1: हनी, ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
2: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड।
1: ऐसा क्या खास है वहाँ?
2: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
1: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
2: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड, सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818। दैट्स 3804-3818।
3: आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है। मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता, लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट, फ्री ऑफ चार्ज। रिंग करें प्रकाश मेनन को, फोन 3630-5438, 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660, 0415-952-660।
4: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता, कल को इमरजेंसी हो जाए तो?
5: तूने ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाइप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, CK बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
4: सीरियसली, मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड?
5: बिल्कुल, ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए? ओम्स ऑर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in, व्हाट्सएप या कॉल कीजिए। इंडिया नंबर 844-838-1360। ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।

बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।

0: Excuse me, may I? Some matches are made in heaven and some are made at weddings. Every wedding is special. Think weddings, think Roy Singh. From the grand ballroom to your childhood backyard to a faraway beach, the big day comes in all sizes and styles, and that is why I'm proud that you have trusted me with your civil wedding, and I cannot wait to help you create yours. Contact me, Roy Singh, today on 0411-022-602, 0411-022-602, or email me at roylindrasingh@gmail.com. Think weddings, think Roy Singh.
1: देखा लड़की से माफी मांग,
2: अबे माफी मांग, इतना याद रखना अगर तू लड़की को इज्जत देगा तो लड़की तुझे अपनी इज्जत देगी।
3: है शनिवार मस्ती म्यूजिक रेडियो विस्पानी अयाम दोस्तों, साथ है हमारा आज आपका ठीक 3 बजे तक मस्ती भरी प्रोग्राम पर आप मस्ती में झूमे हमारे साथ रेडियो विस्पानी के साथ सुख।

0: मेरा नाम डॉक्टर कुमार है और यहाँ कुछ ऐसा है जिसे जानना अच्छा है। एक नया नेशनल लंग कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ है। ये सरल है, निशुल्क है और ये लक्षणों के सामने आने से पहले ही लंग कैंसर का पता लगा सकता है। यदि आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो हो सकता है कि आप ये सोचें कि बहुत देर हो चुकी है या इसके बारे में ना जानना ही बेहतर है। लेकिन क्या आपको पता है कि फेफड़ों की कैंसर की शुरुआत में पता लगाए गए 65% से अधिक मामलों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है। यदि आप 50 से 70 वर्ष की आयु के हैं और आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो अपने डॉक्टर से बात करें या lungcancerscreen.org.au पर जाएं।
1: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है। सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
2: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
1: अच्छा, वो क्या?
2: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
1: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
2: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।
3: सांसों की माला पे सिमरूं मैं।
4: ब्रिस्बेन, क्या आप एक धमाकेदार शाम के लिए तैयार हैं? ऑस्ट्रेलिया में पहली बार रिनाउंड डिवोशनल सिंगर निखार जुनेजा ला रहे हैं भजन जानिंग का अमेजिंग एक्सपीरियंस खास ब्रिस्बेन के लिए। म्यूजिक, डिवोशन, पॉजिटिविटी और कनेक्शन से भरी इस शाम को हजारों आवाजें मिलकर बनाएंगी एक शानदार एक्सपीरियंस। फ्राइडे 30th अक्टूबर 2026, डोर विल ओपन एट 6 PM एट शैंडलर थिएटर, कॉर्नर ऑफ ओल्ड क्लीवलैंड रोड एंड टली रोड, शैंडलर। सबसे खास बात, ये सिर्फ एक म्यूजिकल इवेंट नहीं, एक मीनिंगफुल कॉज भी है। ऑर्गेनाइज बाय सिंपली ह्यूमन सुपर हीरोज विदाउट केप्स, जो कैंसर पेशेंट्स और उनकी फैमिलीज को सपोर्ट कर रहे हैं। हर टिकट परचेज इस ब्यूटीफुल इनिशिएटिव को सपोर्ट करेगा। प्राउड पार्टनर स्वदेश फूड्स एंड स्पेशल थैंक्स टू सेलिब्रिटी पार्टनर शौर्य एंटरटेनमेंट। निखार जुनेजा, अ जर्नी विद इन, एक शाम भजन, भक्ति और स्पिरिचुअलिटी के नाम। On sale now at premiertickets.co. Sponsorships, partnerships और ज्यादा जानकारी के लिए contact Prerna on 04302280009. Proudly sponsored by Aussies Migration and Education and powered by Swadesh Foods. Come for the music, stay for the purpose, leave inspired.
5: और समय हुआ दोस्तों 3:45 बज चुके हैं हमारे स्टूडियोज के घड़ी पर, और हमारा आपका साथ है ठीक 3 बजे तक है शनिवार मस्ती म्यूजिक रेडियो बिस्पानी अयम। और देखिए हमारे साथ कौन सफर कर रहा है, ब्रिस्बेन में नहीं लेकिन हमारे साथ सफर पर है ऑल द वे सैक्रामेंटो यूएसए में ड्राइव पर है ललिता गौतम, और आप सुनना चाहते हैं अगला गजल सॉन्ग। हम तेरे शहर में आए मुसाफिर की तरह,

0: मेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह। हमारे साथ सफर पर है, ड्राइव कर रही है वहाँ सैक्रामेंटो यूएसए में, प्रोग्राम को एंजॉय कर रही है ललिता गौतम। थैंक यू फॉर योर कॉल एंड थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग मी। हैव अ सेफ ड्राइव।
1: नवी क्वींसलैंड सरकार 4000 हेक्टेयर तो भी वध जमीन रिहायश लई उपलब्ध करवा रही है। लोड़वंदां लई 53,500 समाजिक अते कम्युनिटी घर मुहैया करवा रही है। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित, ऑथराइज बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन। वधेरे किफायती रिहायश की शुरुआत वधेरे घरां दी उपलब्धता नाल हुंदी है। इसे लई नवी क्वींसलैंड सरकार बुनियादी ढांचे विच $2 बिलियन दा निवेश कर रही है, तां जो क्वींसलैंड भर विच 98,000 नवे घरां दे निर्माण दा राह खोलिया जा सके। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित, ऑथराइज बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।
0: चलिए दोस्तों, आखिरी फरमाइश पर हम आ पहुंचे हैं और आखिरी फरमाइश जो है अभी गजल की फरमाइश है हमारे पास, और फरमाइश करने वाले एक बार फिर विजयन और कामनी फ्रॉम सैक्रामेंटो यूएसए। थैंक्स फॉर जॉइनिंग मी एंड थैंक्स फॉर लविंग द प्रोग्राम। तो आपने फरमाइश किया है पंकज उदास की आवाज का अगला गजल सॉन्ग, और क्या भी बोल है, आप जिनके करीब होते हैं। और गीत हमारे फॉरेस्ट लेक से हाफिज भाई जावेदा खान को भी बहुत पसंद है, आप दोनों को भी आज इस गीत में हम याद कर रहे हैं। लेकिन खास फरमाइश है सैक्रामेंटो यूएसए से विजय नव कामनी की ओर से।

बहुत प्यारा सा गजल आपने सुना। फरमाइश करने वाले थे विजयन और कामनी जो हमें सुन रहे हैं सेक्रमेंटो यूएसए में। और हमारे भाई हफीज अली खान और जवेदा खान को भी ये गजल बहुत पसंद है। आप दोनों को भी इसमें हमने याद किया पंकज उदास की आवाज़ का। और याद रखिएगा दोस्तों, जबकि हमारा समय हो गया है, चलने का समय हुआ, एक मिनट रह गए हैं 3 बजने में। हमारा आपका साथ आज यहीं तक था। साथ देने के लिए बहुत बहुत बहुत धन्यवाद। और याद रखिएगा कि कल यानी कि संडे को आपके साथ हो जाते हैं 12:30 से रॉय सिंह, लेकिन रॉय कल प्रोग्राम पर नहीं आने वाले हैं, इसलिए आपका हमारा साथ होगा शायद बहुत लंबी टाइम तक। तो टुमारो विल बी अ बिट लॉन्ग डे। अगर आपको अपना भी कुछ मेरे साथ शेयर करना है, अगर बर्थडेज है या वेडिंग है, वेडिंग एनिवर्सरी है, अपना डेडिकेशन है, कुछ भी है, तो आप मुझे ज़रूर कंपनी कीजिएगा। नमस्ते, खुदा हाफिज़। हैव अ नाइस लॉन्ग वीकेंड, एन्जॉय योर लॉन्ग वीकेंड। नमस्ते, खुदा हाफिज़, टेक केयर, लव यू ऑल, गुड बाय।

मैं कुछ भी कर लूं, तुम कभी मुझसे मोहब्बत नहीं करना चाहती, और तुम कुछ भी कर लो, मैं कभी तुमसे नफरत नहीं कर सकता।

0: ओए राहुल, वीरे तेरे केस दा की होया?
1: ओ यारा, मैं बहुत वरीड हां। आई एक्चुअली वांट एन एक्सपीरियंस्ड लॉयर टू हैंडल माय केस।
0: गो फॉर द बेस्ट वीरे। अतुल भारद्वाज जी नु अज ही कांटेक्ट करो। ओना दे कोल वास्ट एक्सपीरियंस आ ते लॉ दी इंट्री केसेस नु हैंडल करन च वी ओ एक्सपर्ट हन। क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक

0: I'm so relaxed to hear that.
1: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Ajji contact karo Atul Jino on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
2: Anuj, koi achha sa lawyer suggest karo na. Aisa jo meri sari baat dhang se sune, samjhe aur phir mere tarike se mujhe samjhaye.
3: Arshad Lawyers hai tumhari problem ka solution. Commercial matter ho, jaise lease ka mamla, business ho, ya phir gharon ki buying selling ka mamla. और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी वो सब में मदद कर सकती हैं और फिक्र करने की जरूरत नहीं है अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो
2: अरे वाह इनका पता बताना
3: अरशाद लॉयर्स माउंट ग्रेविट शोग्राउंड्स ऑफिस 5-1644 लोगन रोड माउंट ग्रेविट एम्पल पार्किंग कॉल अरशाद फ्रॉम अरशाद लॉयर्स नाउ On 0420-933-171. Website www.arshadlawyers.com. We pride ourselves in providing excellent service.

0: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
1: यार I'm so worried. Actually want an experienced lawyer to handle my case.
0: मेरी एडवाइस है go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का वास्ट एक्सपीरियंस है और लॉ की एंट्री केसेस को हैंडल करने में उनकी एक्सपर्टीज है. क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक ऑफेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस में 12 साल से ज्यादा का रिच एक्सपीरियंस, और तो और कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज में भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स के लॉयर्स का वास्ट एक्सपीरियंस है. एंड द बेस्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली टू मिनिमाइज इट.
1: थैंक्स अटर्नी यार, आई एम सो रिलैक्स्ड टू हियर दैट.
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
2: Are you ready to stop renting and thinking about owning one? Or maybe an investor looking to invest? Then think no more, and it is time to build your future in upcoming house and land packages available in Oxley, Breckenridge, Moggill and surrounding areas in Brisbane, Queensland. It is the great Australian dream. Homes built strong, smart and built to last. If you are ready to make the move, then don't wait till tomorrow. Call agent John Lawla on 0404-004-899. Yes, it's 0404-004-899. And quote code word Briswani. Your new home waiting for you in Oxley, Breckenridge, Moggill and surrounding areas in Brisbane, Queensland.

0: Hi, this is Amitabh Bachchan.
1: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
2: Hi guys, I'm Manmeet from the Meet Brothers. आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
3: Hi, this is Salman Khan.
4: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
5: Hi, this is Deepika Padukone. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
6: To everyone tuning into Radio Briswani, this is Alia.
7: Hi, मैं हूँ तुलसी कुमार और आप मुझे सुन रहे हैं Radio Briswani से.
8: To everyone tuning into Radio Briswani, this is Shahrukh Khan.
9: Hi, this is Ajay Devgan और आप सुन रहे हैं Radio Briswani.
10: मेरा नाम डॉक्टर कुमार है और यहाँ कुछ ऐसा है जिसे जानना अच्छा है. एक नया नेशनल लंग कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ है. ये सरल है, निशुल्क है और ये लक्षणों के सामने आने से पहले ही लंग कैंसर का पता लगा सकता है. यदि आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो हो सकता है कि आप ये सोचें कि बहुत देर हो चुकी है या इसके बारे में ना जानना ही बेहतर है. लेकिन क्या आपको पता है कि फेफड़ों के कैंसर की शुरुआत में पता लगाए गए 65% से अधिक मामलों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है. यदि आप 50 से 70 वर्ष की आयु के हैं और आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो अपने डॉक्टर से बात करें या lungcancerscreen.org.au पर जाएं.

0: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है। सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
1: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
0: अच्छा, वो क्या?
1: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
0: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
1: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।
2: सांसों की माला पे सिमरूं मैं।
3: ब्रिस्बेन, क्या आप एक धमाकेदार शाम के लिए तैयार हैं? ऑस्ट्रेलिया में पहली बार रिनाउंड डिवोशनल सिंगर निखार जुनेजा ला रहे हैं भजन जानिंग का अमेजिंग एक्सपीरियंस खास ब्रिस्बेन के लिए। म्यूजिक, डिवोशन, पॉजिटिविटी और कनेक्शन से भरी इस शाम को हजारों आवाजें मिलकर बनाएंगी एक शानदार एक्सपीरियंस। फ्राइडे 30th अक्टूबर 2026, डोर विल ओपन एट 6 PM एट शैंडलर थिएटर, कॉर्नर ऑफ ओल्ड क्लीवलैंड रोड एंड टली रोड, शैंडलर। सबसे खास बात, ये सिर्फ एक म्यूजिकल इवेंट नहीं, एक मीनिंगफुल कॉज भी है। ऑर्गेनाइज्ड बाय सिंपली ह्यूमन सुपर हीरोज विदाउट केप्स, जो कैंसर पेशेंट्स और उनकी फैमिलीज को सपोर्ट कर रहे हैं। हर टिकट परचेज इस ब्यूटीफुल इनिशिएटिव को सपोर्ट करेगा। प्राउड पार्टनर स्वदेश फूड्स एंड स्पेशल थैंक्स टू सेलिब्रिटी पार्टनर शौर्य एंटरटेनमेंट। निखार जुनेजा, अ जर्नी विद इन, एक शाम भजन, भक्ति और स्पिरिचुअलिटी के नाम।
4: ओ सिया राम की गली में तुम जाना, वहां नाचते मिलेंगे हनुमाना।
3: टिकट्स ऑन सेल नाउ एट premiertickets.co। स्पॉन्सरशिप्स, पार्टनरशिप्स और ज्यादा जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट प्रेरणा ऑन 04302280009। प्राउडली स्पॉन्सर्ड बाय ऑजीज माइग्रेशन एंड एजुकेशन एंड पावर्ड बाय स्वदेश फूड्स। कम फॉर द म्यूजिक, स्टे फॉर द पर्पस, लीव इंस्पायर्ड।

0: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता, कल को इमरजेंसी हो जाए तो।
1: तूने ओम्स और असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाइप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
0: सीरियसली? मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड?
1: बिल्कुल, ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए, ओम्स ऑर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in, व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 8448381360। ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।
2: भाई मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार, हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
3: तो ओम्स ऑर्ग से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
2: हाँ लेकिन भरोसा कैसे करूं?
3: अरे ओम्स ऑर्ग एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
2: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
3: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
2: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
3: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448381360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470-631-801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई।
4: ओम्सॉक, केयरिंग विद डिग्निटी।

0: क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270 35 पर, या फिर उनसे मिलिए लेवल 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स, एंगेजमेंट्स, रिन्यूअल ऑफ वाउज और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर, हॉल या पार्क में, बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270 35। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270 35, या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस, कंप्लीट लीगल पेपर वर्क, मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी, रिमेम्बर द नेम परमानंद, ये प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003।
1: मैं चाहती हूँ इस बार फंक्शन में बेस्ट ज्वेलरी मैं ही पहनूं, पर कहाँ से खरीदूं पता ही नहीं। आई एम सो कंफ्यूज्ड।
2: अरे इसमें कंफ्यूजन क्या, प्रिंस ज्वेलर्स ब्रिस्बेन क्वींसलैंड में, जो गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी के स्पेशलिस्ट हैं। दे आर इन बिजनेस सिंस 1992। यहाँ अवेलेबल हैं डायमंड नेकलेसेस, बैंगल्स, रिंग्स, इयररिंग्स, गोल्ड एंड सिल्वर कॉइंस, साथ ही ज्वेलरी और वॉच रिपेयर भी होती है।
1: वाओ, तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व। पर एड्रेस?
2: एट शॉप 9B सनी बैंक हिल्स शॉपिंग टाउन, कॉर्नर ऑफ कर्लम एंड 661 क्रॉम्पटन रोड, सनी बैंक हिल्स, क्वींसलैंड 4109। फॉर ऑल योर ज्वेलरी नीड्स कॉन्टैक्ट 3273-7365, दैट्स 3273-7365, और ईमेल prince jewelers@bigpond.com। फैमिली बिजनेस बिल्ट ऑन ट्रस्ट।

0: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
1: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
0: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
1: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड पीवा देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं 100% पीवा क्रीम से, 99.9% पीवा मिल्क फैट से। और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
0: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
1: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
2: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400664435 पर। याद रहे 0400664435 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
3: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है, सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।
4: Some numbers carry weight beyond what you see. Q11700, the master number of Vedic tradition, a heritage Queensland plate, first issued in 1922, a piece of Queensland history with full provenance. Owned outright, transfer ready. For the buyer who understands that the number you carry is a statement of who you are. Q Plate Sales. Inquire at qplatesales.com.au. It's not just a number, it's a statement.

इंडियन फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल DVDs, CDs, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशंस विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा, ओपन डेली फ्रॉम 9 AM। टेलीफोन रानी क्रिएशंस ऑन 3391-0622 और विजिट देयर वेब पेज RaniCreations.com। द वन स्टॉप बॉलीवुड फैशन एंड एंटरटेनमेंट स्टोर, वेल नोन फॉर इट्स क्वालिटी सर्विस एंड रीजनेबल प्राइसेस।

वेलकम बैक। एक बार फिर से मैं हूँ सताक्षी आपके साथ और आप ट्यूनिंग कर चुके हैं रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AMG। हाँ, आपका सबसे चिल और हैपनिंग शो सैटरडे डिलाइट रेडियो ब्रिस्वानी पर हो चुका है शुरू। तो अब ना कोई काम की टेंशन और ना मंडे का डर, सिर्फ और सिर्फ बेस्ट बॉलीवुड म्यूजिक, वीकेंड्स के प्लान, बिंज गाइड और वो सारी बातें जो आपके सैटरडे को बनाएंगी 100% डिलाइटफुल। तो चलिए अपनी कॉफी के साथ शुरू कीजिए आज का हमारा सैटरडे डिलाइट का साथ। और याद रखिए, ये कॉफी भाग दौड़ भरी नहीं होनी चाहिए, आराम वाली होनी चाहिए, क्योंकि सैटरडे है आपके आराम के लिए। स्टे ट्यून्ड रेडियो ब्रिस्वानी, मेरे साथ सुनते रहिए सैटरडे डिलाइट।

वेलकम बैक रेडियो ब्रिस्वानी पर, सैटरडे डिलाइट आप एंजॉय कर रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी 1701 एम पर। कहते हैं अगर अपने वीकेंड्स को कुछ टाइम अपने पार्टनर्स के साथ गुजारे ना, तो आपका पूरा आने वाला हफ्ता बहुत बेहतरीन होता है। कई बार आपको ऐसा लगता है कि आप बहुत स्ट्रेस में आ गए हैं, और ये वो वक्त भी होता है जब ठीक से आपको आपके पार्टनर के साथ वक्त नहीं मिला, रोज़ वही काम, वही जिम्मेदारियाँ। आज ये वक्त है बैठकर शांति से एक दूसरे को सुनने का, और याद रखिए कि आज कोई कंप्लेंट्स नहीं करनी है। इस बात का ख्याल रखना है दोनों को कि सामने वाला थोड़ा रिलीफ महसूस करे, उसका स्ट्रेस लेवल थोड़ा कम हो पाए। तो उससे बीते हुए वीकेंड्स की बातें नहीं करनी है, वो पल उसे याद दिलाने हैं जो आपकी ज़िंदगी के सबसे खूबसूरत और खुशनुमा पल रहे हैं। ठीक है जी, तो अपने वीकेंड्स की शुरुआत इन्हीं खूबसूरत पलों के साथ कीजिए, और हम आपको आगे लेकर चलते हैं एक और ट्रैक के साथ। सदाक्षी के साथ सुनते रहिए सैटरडे डिलाइट, आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी 1701।

0: बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे, रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।
1: आपके सैटरडे को हम आपके लिए और भी खास और स्पेशल बना रहे हैं, कुछ बेहतरीन रोमांटिक और प्यारे गानों के साथ। इन गानों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, एक अगले ट्रैक को भी आपके लिए प्ले करते हैं। आइए, स्टे ट्यून्ड रेडियो प्रसवानी।

सैटरडे डिलाइट। जी हाँ, आपके इसी वीकेंड वाले शो को सताक्षी के साथ आप एंजॉय कर रहे हैं और अपने सैटरडेज को अपने लिए खास और स्पेशल बना रहे हैं। भाई क्यों ना बनाएं, सैटरडे ही तो वो दिन है जिस पर हमारा हक होता है, वरना मंडे टू फ्राइडे तो हमारे दिन पर बॉस का, वाइफ का, हमारे घर वालों का अधिकार होता है। वैसे वाइफ भी ऐसा कह सकती है कि भाई मंडे टू फ्राइडे हस्बैंड का टोटल राइट होता है मेरे हर काम पे। वैसे हाउस वाइफ्स या फिर जो भी लेडीज हैं, सभी के लिए ये चीज़ है यार, हाउस वाइफ हो या वर्किंग हो। एक चीज़ तो कॉमन है कि लेडीज को भाई वीकेंड भी नहीं मिलता है, छुट्टी मिल भी जाए तो घर के हजार काम निकल आते हैं और कैसे काम करते करते पूरा दिन गुजर जाता है, उनका वीकेंड गुजर जाता है, उनको पता नहीं चलता है। वो तो यही सोचती हैं कि मंडे टू फ्राइडे काम करने के बाद छुट्टी मिले सैटरडे को तो हम घर की सफाई कर लें। मंडे टू फ्राइडे बिल्कुल भी वक्त नहीं मिला। वक्त मिले तो ज़रा देख लें कि बच्चे आजकल क्या कर रहे हैं। वक्त मिले तो अपना फेवरेट कुछ खाना बना लिया जाए, बहुत दिन हो गए कि ठीक से कुछ खाया नहीं है। लॉन्ड्री भी तो देखनी है, वक्त मिले तो भाई कपड़े समेट कर जरा धो डाले जाए। सो बहुत सारी चीजें जो लेडीज के मन में चलती रहती हैं। देखा जाए तो भाई मेल्स के लिए ये बात सच है कि उन्हें कम से कम वीकेंड्स मिल जाते हैं, निकल पड़े अपने दोस्तों के साथ सैर सपाटे पर, लेकिन बीवियां जो हैं, जो हमारी होम मेकर्स हैं या फिर वर्किंग लेडीज हैं, उनके लिए ये सैटरडे और संडे भी कुछ नहीं होते हैं। सही कह रही हो ना? सोचिए और सुनते रहिए सताक्षी के साथ सैटरडे डिलाइट, आपके अपने रेडियो ब्रिस्बेन 1701 एम पर।

0: Excuse me, may I? Some matches are made in heaven and some are made at weddings. Every wedding is special. Think weddings, think Roy Singh. From the grand ballroom to your childhood backyard to a faraway beach, the big day comes in all sizes and styles, and that is why I'm proud that you have trusted me with your civil wedding, and I cannot wait to help you create yours. Contact me, Roy Singh, today on 0411-022-602, 0411-022-602, or email me at roylindrasingh@gmail.com. Think weddings, think Roy Singh.
1: Yeah, dhamakedar weekends aap enjoy kar rahe hain Sataakshi ke saath Radio Prasthani par. Music full on hai aur masti high level par pahunch chuki hai. भाई वीकेंड पर मस्ती का भी अपना ही मजा है, क्योंकि वीकेंड वाली मस्ती जो है वो बाकी किसी भी दिन की गई मस्ती से कई गुना ज्यादा एनर्जेटिक होती है. तो इस एनर्जेटिक लेवल को थोड़ा और हाई लेकर चलते हैं. एंजॉय कीजिए अगला ट्रैक मेरे साथ और सुनते रहिए रेडियो प्रसवानी. सदाक्षी आपके साथ है.

म्यूजिक शानदार, मौसम जानदार और आपके साथ है सैटरडे डिलाइट में सताक्षी। वैसे क्या आप जानते हैं कि दुनिया में वीकेंड्स यानी कि दो दिन की छुट्टी का कॉन्सेप्ट कब शुरू हुआ होगा? मैं बताती हूँ, साल था 1908 यानी कि 1908, जब अमेरिका की एक कॉटन मिल में पहली बार सैटरडे और संडे की छुट्टी ऑर्गेनाइज की गई थी ताकि वर्कर्स आराम कर सके। वैसे 1908 में आज के नजरिए को ध्यान में नहीं रखा गया होगा, क्योंकि आज तो एक कड़वा सच है ना कि हम सैटरडे को भी फोन पर हाँ सर मेल देख लिया बोल रहे होते हैं, क्योंकि भैया एंड्रॉइड आ गया है, AI आ गया है, अब बॉस को हम तक पहुंचने में वक्त कहाँ लगता है। तो बॉस आज है सैटरडे, अपने फोन के नोटिफिकेशंस को साइलेंट कीजिए और म्यूजिक का वॉल्यूम थोड़ा और बढ़ा लीजिए और सुनिए ये अगला ट्रैक सताक्षी के साथ। स्टे ट्यून्ड, रेडियो ब्रिस्वानी, आप सुन रहे हैं सैटरडे डिलाइट।

0: सकता, लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करें प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660 0415-952-660।
1: आपके सैटरडे को सदाक्षी के साथ आप एंजॉय कर रहे हैं रेडियो प्रस्वानी 1701 AM पर। आपके वीकेंड्स को और भी खूबसूरत बनाएंगे हम, ये जिम्मेदारी हमारी है, क्योंकि आपके लिए कुछ भी करना हमें अच्छा लगता है। फिलहाल अच्छा लगेगा आपको भी अभी अगला ट्रैक सुनना। एंजॉय कीजिए और मेरे साथ एंजॉय करते रहिए सैटरडे डिलाइट आपके अपने रेडियो प्रस्वानी 1701 AM पर।

मंडे टू फ्राइडे हमारी डाइट भी डाइट पर रहती है, ओट्स ग्रीन टी सब चलता है, लेकिन सैटरडे आते आते भाई सैटरडे को हम बोलने लगते हैं चीट डे। तो आज यानी कि सैटरडे को चीट डे है राजा। आज का एजेंडा बिल्कुल साफ है, जो मन करेगा वो खाएंगे, छोले भटूरे भी खा सकते हैं, डोसा भी खा सकते हैं, लेकिन ओट्स ना बाबा, ओट्स नहीं खाएंगे। मैंने कहा ना सैटरडे आते ही हम प्लान करते हैं, खासकर लेडीज, कि क्या खाएं जो पूरे हफ्ते से नहीं खाया है। तो आज कैलोरीज काउंट करना गैर कानूनी है। या तो अगर खाना बनाने का मन नहीं है तो ऑर्डर प्लेस कर दीजिए, और या फिर किचन में कुछ नया एक्सपेरिमेंट कर लीजिए। फिलहाल जब तक आपका खाना रेडी होता है, हम प्ले करते हैं आपके लिए एक बढ़िया सा मेलोडी सॉन्ग। एंजॉय कीजिए और सुनते रहिए रेडियो प्रिस्वानी। आप सुन रहे हैं सैटरडे डिलाइट।

0: हनी, ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
1: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड।
0: ऐसा क्या खास है वहाँ?
1: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम्ब, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचन वेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
0: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
1: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड, सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818। दैट्स 3804-3818।
2: आप एंजॉय कर रहे हैं सताक्षी के साथ रेडियो ब्रिस्बेन 1701 एफएम पर। आपकी सैटरडे में सताक्षी लगा रही है चार चांद। नहीं, ये दिन वाले चार चांद हैं और इन गानों के साथ हमारे आपके वीकेंड्स की खूबसूरती आगे भी बरकरार रहेगी, जारी रहेगी। फिलहाल एक अगले ट्रैक के साथ आगे चलते हैं। कीप लिसनिंग टू रेडियो ब्रिस्बेन 1701 एफएम।

अच्छा जरा सोचिए, बचपन के सैटरडेज कितने अलग होते थे ना। स्कूल में हाफ डे हो जाया करता था, हमारा तो कम से कम होता ही था। 12 बजे की बेल लगते ही बैग हमारे कंधों पर होता था और भाग निकलते थे हम घर की ओर। उसके बाद हमारे फेवरेट कार्टून शोज शक्तिमान या फिर हॉरर शो शुरू हो जाते थे और शाम दोस्तों के साथ एक बड़ी सी बढ़िया सी साइकिल रेस शुरू हो जाती थी। ना ईमेल का झंझट और ना ही मंडे की चिंता। भाई हमें तो संडे और मंडे में फर्क ही नहीं नजर आता था। बस इतना पता होता था कि संडे मिलेगा फुल ऑन हॉलीडे और सैटरडे भैया हाफ डे मिल गया काफी है। भले ही आज हम बड़े हो गए दोस्तों, लेकिन सैटरडे की वो मासूमियत ना मुझे आज भी याद है। तो चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं और 90s के इस कल्ट सॉन्ग के साथ अपनी पुरानी यादों को ताजा करते हैं। स्टे ट्यून्ड रेडियो प्रसवानी, मेरे साथ एंजॉय करते रहिए सैटरडे डिलाइट।

भाई अगर इस वक्त आप घर पर बैठे बैठे बोर हो रहे हैं तो मेरी एक एडवाइस मानिए, अपनी गाड़ी या स्कूटी की चाबी उठाइए और खिड़की के शीशे नीचे करिए और निकल जाइए शहर के बाहरी किनारे की तरफ। वो बिना किसी डेस्टिनेशन के ड्राइव करने का भी अपना कुछ अलग ही मजा होता है। अच्छे गाने, खुली सड़क और ठंडी हवा, सैटरडे को डिलाइटफुल बनाने के लिए भला और क्या चाहिए। कभी कभी एक सेल्फ ड्राइव भी ना मजा दे देती है। लेकिन हाँ, ताजी हवा जो है वो जब चेहरे पर पड़ती है तो इस सैटरडे का मजा, इस लॉन्ग ड्राइव का मजा, इस सेल्फ ड्राइव का मजा और भी बढ़ जाता है। वैसे लॉन्ग ड्राइव की जब भी बात आती है हम हमेशा पार्टनर को इमेजिन करते हैं ना, कि यार बगल की सीट पर कोई बैठा हो और रोमांटिक म्यूजिक चल रहा हो। लेकिन कभी कभी सेल्फ ड्राइव भी बहुत इम्पॉर्टेंट होती है और ये भी एक पार्टनरशिप होती है आपकी आपके साथ। तो रोमांटिक गाने भी हैं, आपके पास गाड़ी भी है और हमारा आपके साथ साथ भी है। तो हमारा साथ भी छोड़िए, आप अपना साथ पकड़िए और निकल पड़िए इस अगले ट्रैक के साथ। स्टे ट्यून्ड, रेडियो प्रस्वानी सदाक्षी के साथ आप सुन रहे हैं सैटरडे डिलाइट।

ऐसा लगता है ना, मतलब मुझे तो हमेशा हर संडे को लगता है कि यार वीकेंड बड़ी जल्दी खत्म हो गए, क्योंकि जो पल खुशी के होते हैं ना दोस्तों, वो जल्दी बीत जाते हैं। अब देखिए ना, अगर आप अपने दोस्तों के साथ सैटरडे या संडे को आउटिंग पर जाते हैं या फिर फैमिली के साथ एक अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं, तो डेफिनेटली वो टाइम जो है, हाँ हाँ जानती हूँ भाई, अगर अपने पार्टनर के साथ भी अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं तो वो टाइम डेफिनेटली आपको खुशी देता है, खुशी से भरा समय होता है। और जब वीकेंड खत्म होते हैं, मंडे वापस आता है, तो उस टाइम से आपको दूरी बनानी पड़ती है एटलीस्ट एक हफ्ते तक तो। और खुशी के पल बड़े छोटे होते हैं, बड़ी जल्दी खत्म हो जाते हैं, शायद इसीलिए कहा गया है। फिलहाल अभी ये पल खत्म नहीं हुए हैं, सैटरडे है और सैटरडे को अभी तो हमारा शो भी आधा है भाई, आपके पास बहुत वक्त है अभी सैटरडे गुजारने का और फिर कल संडे भी है। फिलहाल आप मेरे साथ ये ट्रैक सुनिए एंड कीप लिसनिंग टू रेडियो प्रस्वानी 1701 AM। आप सुन रहे हैं सैटरडे डिलाइट, आपके साथ है सताक्षी।

0: फायर एंट्स तुहाडे इलाके विच मौजूद हन। जे तुहानू लगदा है कि तुहाडे घर जां जायदाद विच फायर एंट्स हन तां इस दी सूचना दिओ। असी तुहानू फायर एंट्स दे इलाज लई मुफ्त किट भेजांगे। होर जानकारी लई फायर एंट्स क्वींसलैंड जां फायर एंट्स QLD खोजो जां 132 ANT यानी के 132-268 उते कॉल करो। ए सुनिया क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित है, ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट।
1: सैटरडे को यू तो आपको बहुत सारे काम याद आते होंगे, यार ये भी कर ले वो भी कर ले, लेकिन देखिए वीकेंड्स जो है वो रोज रोज नहीं आते हैं, है ना। मंडे ट्यूजडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे इतना काम करेंगे तब जाके आएगा सैटरडे। सो भाई अपना ख्याल रखना भी बहुत जरूरी है। सेल्फ ड्राइव की बात कर रहे थे ना हम, सेल्फ केयर भी बहुत इम्पॉर्टेंट है जी हाँ। और सेल्फ केयर जरूरी नहीं है कि पार्लर में जाकर आप लंबा चौड़ा खर्चा करें, बिल्कुल भी नहीं। आप घर पर भी सो सकते हैं, आराम कर सकते हैं, रिलैक्स कर सकते हैं। यू नो रिलैक्स करने से भी आपके मसल्स लाइट होते हैं, वो लूज होते हैं, उनको अच्छा लगता है, उनका स्ट्रेस निकलता है। मसल्स का स्ट्रेस रिलीज करना भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना आपके ब्रेन का। हाँ, और जब आप आराम से पूरे बिस्तर पर फैल के सोते हैं ना कि यार आज तो वीकेंड्स हैं, आज कुछ भी नहीं करेंगे, तो बस आपकी जिंदगी एकदम चकाचक होने लगती है। क्योंकि जब थकान उतरती है ना तो बहुत सारी चीजें हमें याद आती हैं, यार इस बात पर हम गलत गुस्सा कर रहे थे। कहते हैं ना मूड थोड़ा सा लाइट होता है, तो चलिए अपनी बॉडी को आराम दीजिए, अपने मसल्स को रिलैक्स कीजिए और इंजॉय कीजिए। अभी ये अगला ट्रैक सताक्षी के साथ आप सुन रहे हैं सैटरडे डिलाइट।

हमारा वक्त आ गया है आज के सैटरडे को वाइंड अप करने का। नहीं नहीं, आपके सैटरडे को नहीं भाई साहब, हमारे सैटरडे डिलाइट को वाइंड अप करने का। तो बस अब अपने पूरे वीकेंड्स को अपनी फैमिली के साथ और अपने साथ गुजारते रहिए, घूमिए, खाइए, सोइए, बिंज वॉच कीजिए और जिंदगी को खुलकर इंजॉय कीजिए। मैंने कहा था ना कि वीकेंड्स रोज रोज नहीं आते, फिर से होगी अगले वीकेंड्स सैटरडे डिलाइट में एक बार फिर से आपके साथ एक और मुलाकात। अब आज के इस सफर को वाइंड अप करने का और इससे इजाजत लेने का वक्त है। मस्त रहिए, जबरदस्त रहिए, जिंदगी को जीते रहिए, फोन के नोटिफिकेशन ऑफ रखिए और अपने लाइफ पार्टनर के साथ भी थोड़ा वक्त जरूर गुजारिए। स्टे ट्यून रेडियो प्रस्वानी 1701 AM, क्योंकि रेडियो प्रस्वानी पर अभी बहुत कुछ आपके लिए खास है। मैं लेती हूँ इजाजत, नमस्कार।

0: ओए राहुल, वीरे तेरे केस दा की होया?
1: ओ यारा, मैं बहुत वरीड हां। I actually want an experienced lawyer to handle my case.
0: Go for the best, Vire. Atul Bhardwaj ji nu ajji contact karo. Ona de kol vast experience aa. Te law di intricacies nu handle karan ji o expert han. Criminal law, domestic violence, traffic drug offense vich 12 saal to vadda rich experience. Te conveyance, family law, immigration laws vich vi Bhardwaj and Associates de lawyers da vast experience aa. And the best point, they understand the stress that you go through and work effectively to minimize it.
1: Thanks a ton, Vire. I'm so relaxed to hear that.
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Ajji contact karo Atul Jino on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
2: Anuj, koi achha sa lawyer suggest karo na. Aisa jo meri sari baat dhang se sune, samjhe, aur phir mere tarike se mujhe samjhaye.
3: Arshad Lawyers hai tumhari problem ka solution. कमर्शियल मैटर हो जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
2: अरे वाह, इनका पता बताना।
3: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शोग्राउंड्स, ऑफिस 5, 1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। Call Arshad from Arshad Lawyers now on 0420-933-171. Website www.arshadlawyers.com. We pride ourselves in providing excellent service.

0: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
1: यार I'm so worried. Actually want an experienced lawyer to handle my case.
0: मेरी एडवाइस है, go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का वास्ट एक्सपीरियंस है और लॉ की एंट्री केसेस को हैंडल करने में उनकी एक्सपर्टीज है. क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक ऑफेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस में 12 साल से ज्यादा का रिच एक्सपीरियंस, और तो और कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज में भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स के लॉयर्स का वास्ट एक्सपीरियंस है. एंड द बेस्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली टू मिनिमाइज इट.
1: थैंक्स अटर्नी, आई एम सो रिलैक्स्ड टू हियर दैट.
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
2: Are you ready to stop renting and thinking about owning one? Or maybe an investor looking to invest? Then think no more, and it is time to build your future in upcoming house and land packages available in Oxley, Breckenridge, Morgill and surrounding areas in Brisbane, Queensland. It is the great Australian dream. Homes built strong, smart and built to last. If you are ready to make the move, then don't wait till tomorrow. Call agent John Lawla on 0404-004-899. Yes, it's 0404-004-899. And quote, code word Briswani. Your new home waiting for you in Oxley, Breckenridge, Morgill and surrounding areas in Brisbane, Queensland.

0: Hi, this is Amitabh Bachchan.
1: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
2: Hi guys, I'm Manmeet from the Meet Brothers. आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
3: Hi, this is Salman Khan. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
4: Hi, this is Deepika Padukone. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
5: To everyone tuning into Radio Briswani, this is Alia.
6: Hi, मैं हूँ तुलसी कुमार और आप मुझे सुन रहे हैं Radio Briswani से.
7: To everyone tuning into Radio Briswani, this is Shahrukh Khan.
8: Hi, this is Ajay Devgan और आप सुन रहे हैं Radio Briswani.
9: मेरा नाम डॉक्टर कुमार है और यहाँ कुछ ऐसा है जिसे जानना अच्छा है. एक नया नेशनल लंग कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ है. ये सरल है, निशुल्क है और ये लक्षणों के सामने आने से पहले ही लंग कैंसर का पता लगा सकता है. यदि आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो हो सकता है कि आप ये सोचें कि बहुत देर हो चुकी है या इसके बारे में ना जानना ही बेहतर है. लेकिन क्या आपको पता है कि फेफड़ों की कैंसर की शुरुआत में पता लगाए गए 65% से अधिक मामलों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है. यदि आप 50 से 70 वर्ष की आयु के हैं और आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो अपने डॉक्टर से बात करें या lungcancerscreen.org.au पर जाएं.

0: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है। सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
1: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
0: अच्छा, वो क्या?
1: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
0: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
1: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।
2: सांसों की माला पे सिमरूं मैं।
3: ब्रिस्बेन, क्या आप एक धमाकेदार शाम के लिए तैयार हैं? ऑस्ट्रेलिया में पहली बार रिनाउंड डिवोशनल सिंगर निखार जुनेजा ला रहे हैं भजन जामिंग का अमेजिंग एक्सपीरियंस खास ब्रिस्बेन के लिए। म्यूजिक, डिवोशन, पॉजिटिविटी और कनेक्शन से भरी इस शाम को हजारों आवाजें मिलकर बनाएंगी एक शानदार एक्सपीरियंस। फ्राइडे 30th अक्टूबर 2026, डोर विल ओपन एट 6 PM एट शैंडलर थिएटर, कॉर्नर ऑफ ओल्ड क्लीवलैंड रोड एंड टली रोड, शैंडलर। सबसे खास बात, ये सिर्फ एक म्यूजिकल इवेंट नहीं, एक मीनिंगफुल कॉज भी है। ऑर्गेनाइज बाय सिंपली ह्यूमन सुपर हीरोज विदाउट केप्स, जो कैंसर पेशेंट्स और उनकी फैमिलीज को सपोर्ट कर रहे हैं। हर टिकट परचेज इस ब्यूटीफुल इनिशिएटिव को सपोर्ट करेगा। प्राउड पार्टनर स्वदेश फूड्स एंड स्पेशल थैंक्स टू सेलिब्रिटी पार्टनर शौर्य एंटरटेनमेंट। निखार जुनेजा, अ जर्नी विद इन, एक शाम भजन, भक्ति और स्पिरिचुअलिटी के नाम।
4: उसी आराम की गली में तुम जाना, वहां नाचते मिलेंगे हनुमाना।
3: टिकट्स ऑन सेल नाउ एट premiertickets.co। स्पॉन्सरशिप्स, पार्टनरशिप्स और ज्यादा जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट प्रेरणा ऑन 04302280009। प्राउडली स्पॉन्सर्ड बाय ऑजीज माइग्रेशन एंड एजुकेशन एंड पावर्ड बाय स्वदेश फूड्स। कम फॉर द म्यूजिक, स्टे फॉर द पर्पस, लीव इंस्पायर्ड।

0: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता, कल को इमरजेंसी हो जाए तो।
1: तूने ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाई-अप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
0: सीरियसली? मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड?
1: बिल्कुल, ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए? ओम्स ऑर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in। व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 8448381360। ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।
2: भाई मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार, हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
3: तो ओम्स ऑर्ग से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
2: हाँ लेकिन भरोसा कैसे करूं?
3: अरे ओम्स ऑर्ग एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
2: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
3: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
2: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
3: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448381360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470631801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई।
4: ओम्सॉक, केयरिंग विद डिग्निटी।

0: क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270035 पर या फिर उनसे मिलिए लेवल 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स एंगेजमेंट्स रिन्यूअल ऑफ वाउज और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर हॉल या पार्क में बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270035। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270035 या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस कंप्लीट लीगल पेपर वर्क मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी रिमेम्बर द नेम परमानंद ये प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003।
1: मैं चाहती हूँ इस बार फंक्शन में बेस्ट ज्वेलरी मैं ही पहनूं, पर कहाँ से खरीदूं पता ही नहीं। आई एम सो कंफ्यूज्ड।
2: अरे इसमें कंफ्यूजन क्या, प्रिंस ज्वेलर्स ब्रिस्बेन क्वींसलैंड में जो गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी के स्पेशलिस्ट हैं। दे आर इन बिजनेस सिंस 1992। यहाँ अवेलेबल हैं डायमंड नेकलेसेस, बैंगल्स, रिंग्स, इयररिंग्स, गोल्ड एंड सिल्वर कॉइंस। साथ ही ज्वेलरी और वॉच रिपेयर भी होती है।
1: वाओ, तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व। पर एड्रेस?
2: एट शॉप 9B सनी बैंक हिल्स शॉपिंग टाउन कॉर्नर ऑफ कर्लम एंड 661 क्रॉम्पटन रोड सनी बैंक हिल्स क्वींसलैंड 4109। फॉर ऑल योर ज्वेलरी नीड्स कॉन्टैक्ट 3273-7365 दैट्स 3273-7365 और ईमेल prince jewelers@bigpond.com। फैमिली बिजनेस बिल्ट ऑन ट्रस्ट।

0: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
1: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
0: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
1: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड प्योर देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं, 100% प्योर क्रीम से, 99.9% प्योर मिल्क फैट से, और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
0: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
1: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
2: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400664435, याद रहे 0400664435, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
3: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है, सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।
4: Some numbers carry weight beyond what you see. Q11700, the master number of Vedic tradition, a heritage Queensland plate, first issued in 1922, a piece of Queensland history with full provenance, owned outright, transfer ready. For the buyer who understands that the number you carry is a statement of who you are, Q Plate Sales. Inquire at qplatesales.com.au. It's not just a number, it's a statement.

0: इंडियन फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल डीवीडी, सीडीज, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशंस विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा, ओपन डेली फ्रॉम 9 AM। टेलीफोन रानी क्रिएशंस ऑन 3391-0622 और विजिट देयर वेब पेज ranicreations.com। द वन स्टॉप बॉलीवुड फैशन एंड एंटरटेनमेंट स्टोर, वेल नोन फॉर इट्स क्वालिटी सर्विस एंड रीजनेबल प्राइसेस।
1: बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरनमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।

0: Excuse me, may I? Some matches are made in heaven and some are made at weddings. Every wedding is special. Think weddings, think Roy Singh. From the grand ballroom to your childhood backyard to a faraway beach, the big day comes in all sizes and styles, and that is why I'm proud that you have trusted me with your civil wedding, and I cannot wait to help you create yours. Contact me, Roy Singh, today on 0411-022-602, 0411-022-602, or email me at royleendrasingh@gmail.com. Think weddings, think Roy Singh.
1: आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है। मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता, लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करे प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438, 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660, 0415-952-660।

0: फिल्मों के क्लाइमैक्स में हीरो जीतता है और लड़की ले जाता है, असल जिंदगी में विलेन।
1: ए विलेन।
2: वधेरे किफायती रिहायश की शुरुआत वधेरे घर की उपलब्धता नाल हुंदी है। इसे लिए नवी क्वींसलैंड सरकार सूबे भर में 98,000 तो भी वध नवे घर के निर्माण का राह खोल रही है। असी होर घर जल्दी बनाने लिए बुनियादी ढांचे में $2 बिलियन का निवेश कर रहे हैं। असी रिहायश लिए 4100 हेक्टेयर तो वध जमीन उपलब्ध करवा दी है। लोड़वंदा लिए 53,500 समाजिक कम्यूनिटी घर मुहैया करवा रहे हैं। इस तो अलावा होर भी योजनावां तैयार हैं। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारत, ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन। नवी क्वींसलैंड सरकार 4,000 हेक्टेयर तो भी वध जमीन रिहायश लई उपलब्ध करवा रही है। लोड़वंदा लिए 53,500 समाजिक कम्यूनिटी घर मुहैया करवा रही है। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारत, ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

0: ओए राहुल, विरे तेरे केस दा की होया?
1: ओ यारा, मैं बहुत वरीड हां। I actually want an experienced lawyer to handle my case.
0: Go for the best, Vire. Atul Bhardwaj ji nu ajji contact karo. Ona de kol vast experience aa. Te law di entry cases nu handle karan ji o expert han. Criminal law, domestic violence, traffic drug offense vich 12 saal to vadh da rich experience. Te conveyance, family law, immigration laws vich vi Bhardwaj and Associates de lawyers da vast experience aa. And the best point, they understand the stress that you go through and work effectively to minimize it.
1: Thanks a ton, Vire. I'm so relaxed to hear that.
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Ajji contact karo Atul Jino on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
2: Anuj, koi achha sa lawyer suggest karo na. Aisa jo meri sari baat dhang se sune, samjhe, और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
3: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
2: अरे वाह, इनका पता बताना।
3: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शोग्राउंड्स, ऑफिस 5-1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com. We pride ourselves in providing excellent service.

0: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
1: यार आई एम सो वरीड, आई एक्चुअली वांट एन एक्सपीरियंस लॉयर टू हैंडल माय केस।
0: मेरी एडवाइस है, गो फॉर द बेस्ट। अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का वास्ट एक्सपीरियंस है और लॉ की एंट्री केसेस को हैंडल करने में उनकी एक्सपर्टीज है। क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक ऑफेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस में 12 साल से ज्यादा का रिच एक्सपीरियंस, और तो और कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज में भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स के लॉयर्स का वास्ट एक्सपीरियंस है। एंड द बेस्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली टू मिनिमाइज इट।
1: थैंक्स अटनिया, आई एम सो रिलैक्स्ड टू हियर दैट।
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
2: Are you ready to stop renting and thinking about owning one? Or maybe an investor looking to invest? Then think no more, and it is time to build your future in upcoming house and land packages available in Oxley, Breckenridge, Morgill and surrounding areas in Brisbane, Queensland. It is the great Australian dream. Homes built strong, smart and built to last. If you are ready to make the move, then don't wait till tomorrow. Call agent John Lawla on 0404-004-899. Yes, it's 0404-004-899. And quote, code word Briswani. Your new home waiting for you in Oxley, Breckenridge, Morgill and surrounding areas in Brisbane, Queensland.

0: Hi, this is Amitabh Bachchan.
1: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
2: Hi guys, I'm Manmeet from the Meet Brothers. आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
3: Hi, this is Salman Khan. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
4: Hi, this is Deepika Padukone. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
5: To everyone tuning into Radio Briswani, this is Alia.
6: Hi, मैं हूँ Tulsi Kumar और आप मुझे सुन रहे हैं Radio Briswani से.
7: To everyone tuning into Radio Briswani, this is Shahrukh Khan.
8: Hi, this is Ajay Devgan और आप सुन रहे हैं Radio Briswani.
9: मेरा नाम डॉक्टर कुमार है और यहाँ कुछ ऐसा है जिसे जानना अच्छा है. एक नया नेशनल लंग कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ है. ये सरल है, निशुल्क है और ये लक्षणों के सामने आने से पहले ही लंग कैंसर का पता लगा सकता है. यदि आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो हो सकता है कि आप ये सोचें कि बहुत देर हो चुकी है या इसके बारे में ना जानना ही बेहतर है. लेकिन क्या आपको पता है कि फेफड़ों के कैंसर की शुरुआत में पता लगाए गए 65% से अधिक मामलों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है. यदि आप 50 से 70 वर्ष की आयु के हैं और आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो अपने डॉक्टर से बात करें या lungcancerscreen.org.au पर जाएं.

0: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है। सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
1: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
0: अच्छा, वो क्या?
1: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
0: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
1: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।
2: सासों की माला पे सिमरूं मैं।
3: ब्रिस्बेन, क्या आप एक धमाकेदार शाम के लिए तैयार हैं? ऑस्ट्रेलिया में पहली बार रिनाउंड डिवोशनल सिंगर निखार जुनेजा ला रहे हैं भजन जामिंग का अमेजिंग एक्सपीरियंस खास ब्रिस्बेन के लिए। म्यूजिक, डिवोशन, पॉजिटिविटी और कनेक्शन से भरी इस शाम को हजारों आवाजें मिलकर बनाएंगी एक शानदार एक्सपीरियंस। फ्राइडे 30th अक्टूबर 2026, डोर विल ओपन एट 6 PM एट शैंडलर थिएटर, कॉर्नर ऑफ ओल्ड क्लीवलैंड रोड एंड टली रोड, शैंडलर। सबसे खास बात, ये सिर्फ एक म्यूजिकल इवेंट नहीं, एक मीनिंगफुल कॉज भी है। ऑर्गेनाइज बाय सिंपली ह्यूमन सुपर हीरोज विदाउट केप्स, जो कैंसर पेशेंट्स और उनकी फैमिलीज को सपोर्ट कर रहे हैं। हर टिकट परचेज इस ब्यूटीफुल इनिशिएटिव को सपोर्ट करेगा। प्राउड पार्टनर स्वदेश फूड्स एंड स्पेशल थैंक्स टू सेलिब्रिटी पार्टनर शौर्य एंटरटेनमेंट। निखार जुनेजा, अ जर्नी विद इन, एक शाम भजन, भक्ति और स्पिरिचुअलिटी के नाम। On sale now at premiertickets.co. Sponsorships, partnerships और ज्यादा जानकारी के लिए contact Prerna on 04302280009. Proudly sponsored by Aussies Migration and Education and powered by Swadesh Foods. Come for the music, stay for the purpose, leave inspired.

0: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता, कल को इमरजेंसी हो जाए तो।
1: तूने ओम्स और असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाइप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
0: सीरियसली, मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड।
1: बिल्कुल, ओम्सॉर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए, ओम्सॉर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in, व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 8448381360। ओम्सॉर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।
2: भाई मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार, हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
3: तो ओम्सॉर्ग से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
2: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
3: अरे ओम्सॉर्ग एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
2: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
3: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
2: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
3: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448381360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470631801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई। ओम्सॉर्ग, केयरिंग विद डिग्निटी।

0: क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270 35 पर, या फिर उनसे मिलिए लेवल 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स, एंगेजमेंट्स, रिन्यूअल ऑफ वाउज और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर, हॉल या पार्क में, बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270 35। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270 35, या फिर ईमेल करे permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस, कंप्लीट लीगल पेपर वर्क, मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी, रिमेम्बर द नेम परमानंद, योर प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003।
1: मैं चाहती हूँ इस बार फंक्शन में बेस्ट ज्वेलरी मैं ही पहनूं, पर कहाँ से खरीदूं पता ही नहीं। I'm so confused.
2: अरे इसमें कंफ्यूजन क्या, प्रिंस ज्वेलर्स ब्रिस्बेन क्वींसलैंड में, जो गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी के स्पेशलिस्ट हैं। दे आर इन बिजनेस सिंस 1992। यहाँ अवेलेबल हैं डायमंड नेकलेसेस, बैंगल्स, रिंग्स, इयररिंग्स, गोल्ड एंड सिल्वर कॉइंस, साथ ही ज्वेलरी और वॉच रिपेयर भी होती है।
1: Wow, तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व, पर एड्रेस?
2: एट शॉप 9B सनी बैंक हिल्स शॉपिंग टाउन, कॉर्नर ऑफ कर्लम एंड 661 क्रॉम्पटन रोड, सनी बैंक हिल्स, क्वींसलैंड 4109। फॉर ऑल योर ज्वेलरी नीड्स कॉन्टैक्ट 3273-7365, दैट्स 3273-7365, और ईमेल princejewelers@bigpond.com। फैमिली बिजनेस बिल्ट ऑन ट्रस्ट।

0: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
1: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
0: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
1: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड प्योर देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं, 100% प्योर क्रीम से, 99.9% प्योर मिल्क फैट से, और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
0: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
1: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
2: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400664435 पर, याद रहे 0400664435 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
3: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है, सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।
4: Some numbers carry weight beyond what you see. Q11700, the master number of Vedic tradition, a heritage Queensland plate, first issued in 1922, a piece of Queensland history with full provenance, owned outright, transfer ready. For the buyer who understands that the number you carry is a statement of who you are, Q Plate Sales. Inquire at qplatesales.com.au. It's not just a number, it's a statement.

0: इंडियन फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल डीवीडी, सीडीज, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशंस विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा, ओपन डेली फ्रॉम 9 AM। टेलीफोन रानी क्रिएशंस ऑन 3391-0622 और विजिट देयर वेब पेज ranicreations.com। द वन स्टॉप बॉलीवुड फैशन एंड एंटरटेनमेंट स्टोर, वेल नोन फॉर इट्स क्वालिटी सर्विस एंड रीजनेबल प्राइसेस।
1: बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।

0: too, or email me at royalindrasingh@gmail.com. Think weddings, think Roy Singh.
1: आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है। मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता, लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करें प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438, 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660, 0415-952-660.

0: हनी, ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
1: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड।
0: ऐसा क्या खास है वहाँ?
1: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम्ब, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
0: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
1: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड, सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818। दैट्स 3804-3818।
2: क्वींसलैंड दी नवी सरकार ब्रिस्बेन लई वड्डे काम पूरे कर रही है। असी 50 सेंट दे किराए पक्के तौर उते लागू कर दिते हन। असी होर भी वल डॉक्टर मुहैया करवा रहे हां अते प्रिंस चार्ल्स अते रॉयल ब्रिस्बेन वर्गे हस्पतालां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। 1600 होर पुलिसकर्मी अते होर सख्त कानून लिया रहे हां। स्थानीय स्कूल अते खेड क्लबां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। नाल ही 2032 अते उस तो भी अग्गे दे समय वास्ते एक नवी खेड इमारत जिस विच एक नेशनल एक्वाटिक सेंटर अते एथलीट विलेज शामिल हन जो के अग्गे चल के रिहायश लई वरती जावेगी। असी तुहाडे लई होर की मुहैया करवा रहे हां इस बारे जानो। डिलीवरिंग फॉर क्वींसलैंड सर्च करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित, ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

0: ओए राहुल, वीरे तेरे केस दा की होया?
1: ओ यारा, मैं बहुत वरीड हां। आई एक्चुअली वांट एन एक्सपीरियंस्ड लॉयर टू हैंडल माय केस।
0: गो फॉर द बेस्ट वीरे, अतुल भारद्वाज जी नु अज ही कांटेक्ट करो। ओना दे कोल वास्ट एक्सपीरियंस आ ते लॉ दी इंट्रीकेसीज नु हैंडल करन च वी ओ एक्सपर्ट हन। क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक वायलेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस विच 12 साल तो वध दा रिच एक्सपीरियंस ते कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमीग्रेशन लॉज विच वी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स दे लॉयर्स दा वास्ट एक्सपीरियंस आ। एंड द बेस्ट पॉइंट, they understand the stress that you go through and work effectively to minimize it.
1: Thanks a ton, Veere. I'm so relaxed to hear that.
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Ajji contact karo Atul Jino on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
2: Anuj, koi achha sa lawyer suggest karo na. Aisa jo meri sari baat dhang se sune, samjhe, और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
3: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
2: अरे वाह, इनका पता बताना।
3: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शोग्राउंड्स, ऑफिस 5, 1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com। We pride ourselves in providing excellent service.

वहमो गुमान से दूर दूर, यकीन की हद के पास पास, दिल को भरम ये हो गया उनको हमसे प्यार है।

0: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
1: यार I'm so worried. Actually want an experienced lawyer to handle my case.
0: मेरी एडवाइस है go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का वास्ट एक्सपीरियंस है और लॉ की एंट्री केसेस को हैंडल करने में उनकी एक्सपर्टीज है. क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक ऑफेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस में 12 साल से ज्यादा का रिच एक्सपीरियंस, और तो और कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज में भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स के लॉयर्स का वास्ट एक्सपीरियंस है. एंड द बेस्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली टू मिनिमाइज इट.
1: थैंक्स अटनियर, आई एम सो रिलैक्स्ड टू हियर दैट.
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
2: Are you ready to stop renting and thinking about owning one? Or maybe an investor looking to invest? Then think no more, and it is time to build your future in upcoming house and land packages available in Oxley, Breckenridge, Morgill and surrounding areas in Brisbane, Queensland. It is the great Australian dream. Homes built strong, smart and built to last. If you are ready to make the move, then don't wait till tomorrow. Call agent John Lawla on 0404-004-899. Yes, it's 0404-004-899. And quote code word Briswani. Your new home waiting for you in Oxley, Breckenridge, Morgill and surrounding areas in Brisbane, Queensland.

0: Hi, this is Amitabh Bachchan.
1: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
2: Hi guys, I'm Manmeet from the Meet Brothers. आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
3: Hi, this is Salman Khan. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
4: Hi, this is Deepika Padukone. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
5: To everyone tuning into Radio Brisbane, this is Alia.
6: Hi, मैं हूँ तुलसी कुमार और आप मुझे सुन रहे हैं Radio Brisbane से.
7: To everyone tuning into Radio Brisbane, this is Shahrukh Khan.
8: Hi, this is Ajay Devgan और आप सुन रहे हैं Radio Brisbane.
9: मेरा नाम डॉक्टर कुमार है और यहाँ कुछ ऐसा है जिसे जानना अच्छा है. एक नया नेशनल लंग कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ है. ये सरल है, निशुल्क है और ये लक्षणों के सामने आने से पहले ही लंग कैंसर का पता लगा सकता है. यदि आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो हो सकता है कि आप ये सोचें कि बहुत देर हो चुकी है या इसके बारे में ना जानना ही बेहतर है. लेकिन क्या आपको पता है कि फेफड़ों के कैंसर की शुरुआत में पता लगाए गए 65% से अधिक मामलों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है. यदि आप 50 से 70 वर्ष की आयु के हैं और आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो अपने डॉक्टर से बात करें या lungcancerscreen.org.au पर जाएं.

0: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है। सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
1: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
0: अच्छा, वो क्या?
1: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
0: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
1: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।
2: सासों की माला पे सिमरूं मैं।
3: ब्रिस्बेन, क्या आप एक धमाकेदार शाम के लिए तैयार हैं? ऑस्ट्रेलिया में पहली बार रिनाउंड डिवोशनल सिंगर निखार जुनेजा ला रहे हैं भजन जानिंग का अमेजिंग एक्सपीरियंस खास ब्रिस्बेन के लिए। म्यूजिक, डिवोशन, पॉजिटिविटी और कनेक्शन से भरी इस शाम को हजारों आवाजें मिलकर बनाएंगी एक शानदार एक्सपीरियंस। फ्राइडे 30th अक्टूबर 2026, डोर विल ओपन एट 6 PM एट शैंडलर थिएटर, कॉर्नर ऑफ ओल्ड क्लीवलैंड रोड एंड टली रोड, शैंडलर। सबसे खास बात, ये सिर्फ एक म्यूजिकल इवेंट नहीं, एक मीनिंगफुल कॉज भी है। ऑर्गेनाइज बाय सिंपली ह्यूमन सुपर हीरोज विदाउट केप्स, जो कैंसर पेशेंट्स और उनकी फैमिलीज को सपोर्ट कर रहे हैं। हर टिकट परचेज इस ब्यूटीफुल इनिशिएटिव को सपोर्ट करेगा। प्राउड पार्टनर स्वदेश फूड्स एंड स्पेशल थैंक्स टू सेलिब्रिटी पार्टनर शौर्य एंटरटेनमेंट। निखार जुनेजा, अ जर्नी विद इन, एक शाम भजन, भक्ति और स्पिरिचुअलिटी के नाम।
4: ओ सिया राम की गली में तुम जाना, वहां नाचते मिलेंगे हनुमाना।
3: टिकट्स ऑन सेल नाउ एट premiertickets.co। स्पॉन्सरशिप्स, पार्टनरशिप्स और ज्यादा जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट प्रेरणा ऑन 04302280009। प्राउडली स्पॉन्सर्ड बाय ऑजीज माइग्रेशन एंड एजुकेशन एंड पावर्ड बाय स्वदेश फूड्स। कम फॉर द म्यूजिक, स्टे फॉर द पर्पस, लीव इंस्पायर्ड।

0: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता, कल को इमरजेंसी हो जाए तो।
1: तूने ओम्स और असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाइप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
0: सीरियसली? मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड?
1: बिल्कुल, ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए, ओम्स ऑर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in, व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 8448381360। ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।
2: भाई मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार, हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
3: तो ओम्स ऑर्ग से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
2: हाँ लेकिन भरोसा कैसे करूं?
3: अरे ओम्स ऑर्ग एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
2: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
3: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
2: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
3: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448381360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470631801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई।
4: ओम्सॉक, केयरिंग विद डिग्निटी।

0: क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270355 पर या फिर उनसे मिलिए लेवल 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स, एंगेजमेंट्स, रिन्यूअल ऑफ वाउज और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर, हॉल या पार्क में, बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270355। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270355 या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस, कंप्लीट लीगल पेपर वर्क, मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी, रिमेम्बर द नेम परमानंद, ये प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003।
1: मैं चाहती हूँ इस बार फंक्शन में बेस्ट ज्वेलरी मैं ही पहनूं, पर कहाँ से खरीदूं पता ही नहीं। आई एम सो कंफ्यूज्ड।
2: अरे इसमें कंफ्यूजन क्या, प्रिंस ज्वेलर्स ब्रिस्बेन क्वींसलैंड में, जो गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी के स्पेशलिस्ट हैं। दे आर इन बिजनेस सिंस 1992। यहाँ अवेलेबल हैं डायमंड नेकलेसेस, बैंगल्स, रिंग्स, इयररिंग्स, गोल्ड एंड सिल्वर कॉइंस, साथ ही ज्वेलरी और वॉच रिपेयर भी होती है।
1: वाओ, तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व। पर एड्रेस?
2: एट शॉप 9B सनी बैंक हिल्स शॉपिंग टाउन, कॉर्नर ऑफ कर्लम एंड 661 क्रॉम्पटन रोड, सनी बैंक हिल्स, क्वींसलैंड 4109। फॉर ऑल योर ज्वेलरी नीड्स कॉन्टैक्ट 3273-7365, दैट्स 3273-7365, और ईमेल prince jewelers@bigpond.com। फैमिली बिजनेस बिल्ट ऑन ट्रस्ट।

0: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
1: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
0: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
1: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड पीवा देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं 100% पीवा क्रीम से, 99.9% पीवा मिल्क फैट से। और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
0: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
1: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
2: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400664435 पर। याद रहे 0400664435 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
3: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है, सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।
4: Some numbers carry weight beyond what you see. Q11700, the master number of Vedic tradition, a heritage Queensland plate, first issued in 1922, a piece of Queensland history with full provenance, owned outright, transfer ready. For the buyer who understands that the number you carry is a statement of who you are, Q Plate Sales. Inquire at qplatesales.com.au. It's not just a number, it's a statement.

0: फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल DVDs, CDs, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशन विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा, ओपन डेली फ्रॉम 9 AM। टेलीफोन रानी क्रिएशंस ऑन 3391-0622 और विजिट देयर वेब पेज RaniCreations.com। द वन स्टॉप बॉलीवुड फैशन एंड एंटरटेनमेंट स्टोर, वेल नोन फॉर इट्स क्वालिटी सर्विस एंड रीजनेबल प्राइसेस।
1: बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे, रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।

0: क्या बात है जुबिन, बैक टू बैक सुपर हिट्स, पर लड़की किसी में नहीं मिलती है। ये हाल सिर्फ वीडियो में ही है या रियल लाइफ में भी?
1: ये दिल ऐसी गलती नहीं करता।

0: Excuse me, may I? Some matches are made in heaven and some are made at weddings. Every wedding is special. Think weddings, think Roy Singh. From the grand ballroom to your childhood backyard to a faraway beach, the big day comes in all sizes and styles, and that is why I'm proud that you have trusted me with your civil wedding, and I cannot wait to help you create yours. Contact me, Roy Singh, today on 0411-022-602, 0411-022-602, or email me at roylindrasingh@gmail.com. Think weddings, think Roy Singh.
1: आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है। मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता, लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करें प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438, 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660, 0415-952-660।

0: तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
1: Yes baby, but no compromise with quality and health. हम जाएंगे सिर्फ MC's Indian and Island Food.
0: ऐसा क्या खास है वहाँ?
1: सब कुछ, quality spices, lentils, rice, flour और frozen सब्जी from Fiji and India. Brisbane के best Indian butcher supplying farm fresh goat, lamb, chicken and duck और fresh local produce भी रखते हैं. साथ ही kitchenware and disposable plates की large range किसी भी function के लिए.
0: अरे वाह, intelligent हो गई हो.
1: MC's Indian and Island Food serving Brisbane since 1999. Open 7 days. Find us on Facebook or visit website mcsfoods.com.au. 1/268 Kingston Road, Slacks Creek, phone number 3804-3818. That's 3804-3818.
2: क्वींसलैंड दी नवी सरकार ब्रिस्बेन लई वड्डे काम पूरे कर रही है। असी 50 सेंट दे किराए पक्के तौर उते लागू कर दिते हन। असी होर भी वल डॉक्टर मुहैया करवा रहे हां अते प्रिंस चार्ल्स अते रॉयल ब्रिस्बेन वर्गे हस्पतालां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। 1600 होर पुलिसकर्मी अते होर सख्त कानून लिया रहे हां। स्थानीय स्कूल अते खेड क्लबां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। नाल ही 2032 अते उस तो भी अग्गे दे समय वास्ते एक नवी खेड इमारत जिस विच एक नेशनल एक्वाटिक सेंटर अते एथलीट विलेज शामिल हन जो के अग्गे चल के रिहायश लई वरती जावेगी। असी तुहाडे लई होर की मुहैया करवा रहे हां इस बारे जानो। डिलीवरिंग फॉर क्वींसलैंड सर्च करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित। ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

0: ओए राहुल, वीरे तेरे केस दा की होया?
1: ओ यारा, मैं बहुत वरीड हां। I actually want an experienced lawyer to handle my case.
0: Go for the best, Vire. Atul Bhardwaj ji nu ajji contact karo. Ona de kol vast experience a. Te law di entry cases nu handle karan ch vi oh expert han. Criminal law, domestic violence, traffic drug offense vich 12 saal to vadh da rich experience. Te conveyance, family law, immigration laws vich vi Bhardwaj and Associates de lawyers da vast experience a. And the best point, they understand the stress that you go through and work effectively to minimize it.
1: Thanks, Tanvire. I'm so relaxed to hear that.
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Ajji contact karo Atul Jino on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
2: Anuj, koi achha sa lawyer suggest karo na. Aisa jo meri sari baat dhang se sune, samjhe, और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
3: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
2: अरे वाह, इनका पता बताना।
3: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शोग्राउंड्स, ऑफिस 5-1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com. We pride ourselves in providing excellent service.

0: Hi, this is Amitabh Bachchan.
1: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
2: Hi guys, I'm Manmeet from the Meet Brothers. आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
3: Hi, this is Salman Khan.
4: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
5: Hi, this is Deepika Padukone. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
6: To everyone tuning into Radio Brisbane, this is Alia.
7: Hi, मैं हूँ तुलसी कुमार और आप मुझे सुन रहे हैं Radio Brisbane
8: से. To everyone tuning into Radio Brisbane, this is Shahrukh Khan.
9: Hi, this is Ajay Devgan और आप सुन रहे हैं Radio Brisbane.
10: मेरा नाम डॉक्टर कुमार है और यहाँ कुछ ऐसा है जिसे जानना अच्छा है. एक नया नेशनल लंग कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ है. ये सरल है, निशुल्क है और ये लक्षणों के सामने आने से पहले ही लंग कैंसर का पता लगा सकता है. यदि आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो हो सकता है कि आप ये सोचें कि बहुत देर हो चुकी है या इसके बारे में ना जानना ही बेहतर है. लेकिन क्या आपको पता है कि फेफड़ों के कैंसर की शुरुआत में पता लगाए गए 65% से अधिक मामलों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है. यदि आप 50 से 70 वर्ष की आयु के हैं और आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो अपने डॉक्टर से बात करें या lungcancerscreen.org.au पर जाएं.

0: तो क्या तू फिर भी जान है मेरी।
1: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है, सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
2: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है, मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
1: अच्छा, वो क्या?
2: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
1: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
2: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी।
3: डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन, au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।
4: सासों की माला पे सिमरूं मैं।
5: ब्रिस्बेन, क्या आप एक धमाकेदार शाम के लिए तैयार हैं? ऑस्ट्रेलिया में पहली बार रिनाउंड डिवोशनल सिंगर निखार जुनेजा ला रहे हैं भजन जानिंग का अमेजिंग एक्सपीरियंस खास ब्रिस्बेन के लिए। म्यूजिक, डिवोशन, पॉजिटिविटी और कनेक्शन से भरी इस शाम को हजारों आवाजें मिलकर बनाएंगी एक शानदार एक्सपीरियंस। फ्राइडे 30th अक्टूबर 2026, डोर विल ओपन एट 6 PM एट शैंडलर थिएटर, कॉर्नर ऑफ ओल्ड क्लीवलैंड रोड एंड टली रोड, शैंडलर। सबसे खास बात, ये सिर्फ एक म्यूजिकल इवेंट नहीं, एक मीनिंगफुल कॉज भी है। ऑर्गेनाइज बाय सिंपली ह्यूमन सुपर हीरोज विदाउट केप्स, जो कैंसर पेशेंट्स और उनकी फैमिलीज को सपोर्ट कर रहे हैं। हर टिकट परचेज इस ब्यूटीफुल इनिशिएटिव को सपोर्ट करेगा। प्राउड पार्टनर स्वदेश फूड्स एंड स्पेशल थैंक्स टू सेलिब्रिटी पार्टनर शौर्य एंटरटेनमेंट। निखार जुनेजा, अ जर्नी विद इन, एक शाम भजन, भक्ति और स्पिरिचुअलिटी के नाम। टिकट्स ऑन सेल नाउ एट premierTickets.co। स्पॉन्सरशिप्स, पार्टनरशिप्स और ज्यादा जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट प्रेरणा ऑन 04302280009। प्राउडली स्पॉन्सर्ड बाय ऑजीज माइग्रेशन एंड एजुकेशन एंड पावर्ड बाय स्विदीज फूड्स। कम फॉर द म्यूजिक, स्टे फॉर द पर्पस, लीव इंस्पायर्ड।

0: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता। कल को इमरजेंसी हो जाए तो?
1: तूने ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाई-अप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
0: सीरियसली? मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड?
1: बिल्कुल, ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए? ओम्स ऑर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in। व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 8448381360। ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।
2: भाई, मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
3: तो ओम्स ऑर्ग से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
2: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
3: अरे, ओम्स ऑर्ग एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
2: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
3: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
2: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
3: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448381360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470631801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई।
4: ओम्स ऑर्ग, केयरिंग विद डिग्निटी।

0: क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270355 पर या फिर उनसे मिलिए Level 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स एंगेजमेंट्स रिन्यूअल ऑफ वाउज और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर हॉल या पार्क में बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270355। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270355 या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस कंप्लीट लीगल पेपर वर्क मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी रिमेम्बर द नेम परमानंद योर प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003।
1: मैं चाहती हूँ इस बार फंक्शन में बेस्ट ज्वेलरी मैं ही पहनूं, पर कहाँ से खरीदूं पता ही नहीं। आई एम सो कंफ्यूज्ड।
2: अरे इसमें कंफ्यूजन क्या, प्रिंस ज्वेलर्स ब्रिस्बेन क्वींसलैंड में, जो गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी के स्पेशलिस्ट हैं। दे आर इन बिजनेस सिंस 1992। यहाँ अवेलेबल हैं डायमंड नेकलेसेस, बैंगल्स, रिंग्स, इयररिंग्स, गोल्ड एंड सिल्वर कॉइंस, साथ ही ज्वेलरी और वॉच रिपेयर भी होती है।
1: Wow, तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व। पर एड्रेस?
2: एट शॉप 9B सनी बैंक हिल्स शॉपिंग टाउन कॉर्नर ऑफ कर्लम एंड 661 क्रॉम्पटन रोड सनी बैंक हिल्स क्वींसलैंड 4109। फॉर ऑल योर ज्वेलरी नीड्स कॉन्टैक्ट 3273-7365 दैट्स 3273-7365 और ईमेल prince jewelers@bigpond.com। फैमिली बिजनेस बिल्ट ऑन ट्रस्ट।

0: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
1: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
0: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
1: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड प्योर देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं 100% प्योर क्रीम से, 99.9% प्योर मिल्क फैट से, और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
0: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
1: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
2: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400664435 पर, याद रहे 0400664435 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
3: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।
4: Some numbers carry weight beyond what you see. Q11700, the master number of Vedic tradition, a heritage Queensland plate, first issued in 1922, a piece of Queensland history with full provenance, owned outright, transfer ready. For the buyer who understands that the number you carry is a statement of who you are, Q Plate Sales. Inquire at qplatesales.com.au. It's not just a number, it's a statement.

0: इंडियन फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल डीवीडीज, सीडीज, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशन विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा, ओपन डेली फ्रॉम 9 AM। टेलीफोन रानी क्रिएशंस ऑन 3391-0622 और विजिट देयर वेब पेज ranicreations.com, द वन स्टॉप बॉलीवुड फैशन एंड एंटरटेनमेंट स्टोर, वेल नोन फॉर इट्स क्वालिटी सर्विस एंड रीजनेबल प्राइसेस।
1: बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे, रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 04

0: Excuse me, may I? Some matches are made in heaven and some are made at weddings. Every wedding is special. Think weddings, think Roy Singh. From the grand ballroom to your childhood backyard to a faraway beach, the big day comes in all sizes and styles, and that is why I'm proud that you have trusted me with your civil wedding. And I cannot wait to help you create yours. Contact me, Roy Singh, today on 0411-022-602. 0411-022-602. Or email me at royleendrasingh@gmail.com. Think weddings, think Roy Singh.
1: आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है। मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता, लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करे प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660 0415-952-660।
2: आप लोग सुन रहे हैं गीत युग के प्यार भरे नगमे।

0: तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
1: Yes baby, but no compromise with quality and health. हम जाएंगे सिर्फ MC's Indian and Island Food.
0: ऐसा क्या खास है वहाँ?
1: सब कुछ, quality spices, lentils, rice, flour और frozen सब्जी from Fiji and India. Brisbane के best Indian butcher supplying farm fresh goat, lamb, chicken and duck और fresh local produce भी रखते हैं. साथ ही kitchenware and disposable plates की large range किसी भी function के लिए.
0: अरे वाह, intelligent हो गई हो.
1: MC's Indian and Island Food, serving Brisbane since 1999. Open 7 days. Find us on Facebook or visit website mcsfoods.com.au. 1/268 Kingston Road, Slacks Creek, phone number 3804-3818. That's 3804-3818.
2: क्वींसलैंड दी नवी सरकार ब्रिस्बेन लई वड्डे काम पूरे कर रही है। असी 50 सेंट दे किराए पक्के तौर उते लागू कर दिते हन। असी होर भी वल डॉक्टर मुहैया करवा रहे हां अते प्रिंस चार्ल्स अते रॉयल ब्रिस्बेन वर्गे हस्पतालां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। 1600 होर पुलिसकर्मी अते होर सख्त कानून लिया रहे हां। स्थानीय स्कूल अते खेड क्लबां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। नाल ही 2032 अते उस तो भी अग्गे दे समय वास्ते एक नवी खेड इमारत जिस विच एक नेशनल एक्वाटिक सेंटर अते एथलीट विलेज शामिल हन जो के अग्गे चल के रिहायश लई वरती जावेगी। असी तुहाडे लई होर की मुहैया करवा रहे हां इस बारे जानो। डिलीवरिंग फॉर क्वींसलैंड सर्च करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित। ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

जीना आसान हो। दिल को चुराने वालों आंख न चुराओ, नाम तो बताओ, जान पहचान हो, जीना आसान हो।

जान पहचान हो जीना आसान हो, जान पहचान हो जीना आसान हो। दिल को चुराने वालों आंख न चुराओ, नाम तो बताओ। जान पहचान हो जीना आसान।

0: ਓਏ ਰਾਹੁਲ ਵੀਰੇ ਤੇਰੇ ਕੇਸ ਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ?
1: ਓ ਯਾਰਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਰੀਡ ਆ। I actually want an experienced lawyer to handle my case.
0: Go for the best, Vire. Atul Bhardwaj ji nu aaj hi contact karo. Ona de kol vast experience aa te law di intricacies nu handle karan ch vi oh expert han. Criminal law, domestic violence, traffic drug offense vich 12 saal to vadh da rich experience. Te conveyance, family law, immigration laws vich vi Bhardwaj and Associates de lawyers da vast experience aa. And the best point, they understand the stress that you go through and work effectively to minimize it.
1: Thanks a ton, Vire. I'm so relaxed to hear that.
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Ajji contact karo Atul Jino on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
2: Anuj, koi achha sa lawyer suggest karo na. Aisa jo meri sari baat dhang se sune, samjhe, और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
3: अरशाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
2: अरे वाह, इनका पता बताना।
3: अरशाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शोग्राउंड्स, ऑफिस 5, 1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अरशाद फ्रॉम अरशाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com। We pride ourselves in providing excellent service.

0: Hi, this is Amitabh Bachchan.
1: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
2: Hi guys, I'm Madhvi from the Meat Brothers. आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
3: Hi, this is Salman Khan.
4: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
5: Hi, this is Deepika Padukone. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
6: To everyone tuning into Radio Brisbane, this is Alia.
7: Hi, मैं हूँ तुलसी कुमार और आप मुझे सुन रहे हैं Radio Brisbane से.
8: To everyone tuning into Radio Brisbane, this is Shahrukh Khan.
9: Hi, this is Ajay Devgan और आप सुन रहे हैं Radio Brisbane.
10: मेरा नाम डॉक्टर कुमार है और यहाँ कुछ ऐसा है जिसे जानना अच्छा है. एक नया नेशनल लंग कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ है. ये सरल है, निशुल्क है और ये लक्षणों के सामने आने से पहले ही लंग कैंसर का पता लगा सकता है. यदि आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो हो सकता है कि आप ये सोचें कि बहुत देर हो चुकी है या इसके बारे में ना जानना ही बेहतर है. लेकिन क्या आपको पता है कि फेफड़ों की कैंसर की शुरुआत में पता लगाए गए 65% से अधिक मामलों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है. यदि आप 50 से 70 वर्ष की आयु के हैं और आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो अपने डॉक्टर से बात करें या lungcancerscreen.org.au पर जाएं.

0: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है। सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
1: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
0: अच्छा, वो क्या?
1: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
0: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
1: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।
2: सांसों की माला पे सिमरूं मैं।
3: ब्रिस्बेन, क्या आप एक धमाकेदार शाम के लिए तैयार हैं? ऑस्ट्रेलिया में पहली बार रिनाउंड डिवोशनल सिंगर निखार जुनेजा ला रहे हैं भजन जानिंग का अमेजिंग एक्सपीरियंस खास ब्रिस्बेन के लिए। म्यूजिक, डिवोशन, पॉजिटिविटी और कनेक्शन से भरी इस शाम को हजारों आवाजें मिलकर बनाएंगी एक शानदार एक्सपीरियंस। फ्राइडे 30th अक्टूबर 2026, डोर विल ओपन एट 6 PM एट शैंडलर थिएटर, कॉर्नर ऑफ ओल्ड क्लीवलैंड रोड एंड टली रोड, शैंडलर। सबसे खास बात, ये सिर्फ एक म्यूजिकल इवेंट नहीं, एक मीनिंगफुल कॉज भी है। ऑर्गेनाइज बाय सिंपली ह्यूमन सुपर हीरोज विदाउट केप्स, जो कैंसर पेशेंट्स और उनकी फैमिलीज को सपोर्ट कर रहे हैं। हर टिकट परचेज इस ब्यूटीफुल इनिशिएटिव को सपोर्ट करेगा। प्राउड पार्टनर स्वदेश फूड्स एंड स्पेशल थैंक्स टू सेलिब्रिटी पार्टनर शौर्य एंटरटेनमेंट। निखार जुनेजा, अ जर्नी विद इन, एक शाम भजन, भक्ति और स्पिरिचुअलिटी के नाम।
4: ओ सिया राम की गली में तुम जाना, वहां नाचते मिलेंगे हनुमाना।
3: टिकट्स ऑन सेल नाउ एट premiertickets.co। स्पॉन्सरशिप्स, पार्टनरशिप्स और ज्यादा जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट प्रेरणा ऑन 04302280009। प्राउडली स्पॉन्सर्ड बाय ऑजीज माइग्रेशन एंड एजुकेशन एंड पावर्ड बाय स्वदेश फूड्स। कम फॉर द म्यूजिक, स्टे फॉर द पर्पस, लीव इंस्पायर्ड।

0: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता, कल को इमरजेंसी हो जाए तो।
1: तूने ओम्सऑर्ग असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाइप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
0: सीरियसली, मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड।
1: बिल्कुल, ओम्सऑर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए, ओम्सऑर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in, व्हाट्सएप या कॉल कीजिए, इंडिया नंबर 8448381360। ओम्सऑर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।
2: भाई, मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
3: तो ओम्सऑर्ग से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
2: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
3: अरे, ओम्सऑर्ग एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
2: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
3: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
2: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
3: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448381360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470631801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई।
4: ओम्सऑर्ग, केयरिंग विद डिग्निटी।

0: क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270355 पर, या फिर उनसे मिलिए लेवल 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स, एंगेजमेंट्स, रिन्यूअल ऑफ वाउस और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर, हॉल या पार्क में, बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270355। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270355, या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस, कंप्लीट लीगल पेपर वर्क, मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी, रिमेम्बर द नेम परमानंद, योर प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003।
1: मैं चाहती हूँ इस बार फंक्शन में बेस्ट ज्वेलरी मैं ही पहनूं, पर कहाँ से खरीदूं पता ही नहीं। आई एम सो कंफ्यूज्ड।
2: अरे इसमें कंफ्यूजन क्या, प्रिंस ज्वेलर्स ब्रिस्बेन क्वींसलैंड में, जो गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी के स्पेशलिस्ट हैं। दे आर इन बिजनेस सिंस 1992। यहाँ अवेलेबल हैं डायमंड नेकलेसेस, बैंगल्स, रिंग्स, इयररिंग्स, गोल्ड एंड सिल्वर कॉइंस, साथ ही ज्वेलरी और वॉच रिपेयर भी होती है।
1: Wow, तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व, पर एड्रेस?
2: एट शॉप 9B, सनी बैंक हिल्स शॉपिंग टाउन, कॉर्नर ऑफ कर्लम एंड 661 क्रॉम्पटन रोड, सनी बैंक हिल्स, क्वींसलैंड 4109। फॉर ऑल योर ज्वेलरी नीड्स कॉन्टैक्ट 3273-7365, दैट्स 3273-7365, और ईमेल prince jewelers@bigpond.com। फैमिली बिजनेस बिल्ट ऑन ट्रस्ट।

ओम क्लीम कृष्णाय नमः। जय श्री कृष्ण भक्तजनों, रेडियो प्रस्थानी 1701 AM पर भक्ति की धारा को एक बार फिर से बहाने के लिए भक्ति सागर में मैं सताक्षी आपके साथ हूँ। आज एक नया दिन शुरू हो चुका है, तो अपने अंदर भी उस दिव्य चेतना से जुड़ने का अवसर है जो हमें हर सांस के साथ जीवन देती है। अपनी आंखें मूंदिए, मन को शांत करिए और डूब जाइए आज के इस भक्ति के सफर भक्ति सागर में सताक्षी के साथ रेडियो प्रस्वानी 1701 AM पर। आइए आज के दिन और अपनी भक्ति के सफर की शुरुआत करते हैं इस अनमोल भजन के साथ। सुनते रहिए रेडियो प्रस्वानी।

रेडियो प्रिस्वानी आप सुन रहे हैं सताक्षी के साथ और आप मेरे साथ सुन रहे हैं भक्ति का अनमोल सफर भक्ति सागर। गणपति को प्रथम देव कहा जाता है, लेकिन उन्हें ये प्रथम देव का स्थान किस प्रकार प्राप्त हुआ? एक बार की बात है, कार्तिकेय और गणेश को लेकर देवताओं में ये बहस चल रही थी कि किसे पूजा जाए, किसकी पूजा सबसे पहले हो। कार्तिकेय ने कहा, मैं बड़ा हूँ तो पूजा मेरी होनी चाहिए। गणपति ने कहा, मैं लंबोदर हूँ, पूजा मेरी होनी चाहिए। देवता बहुत ज्यादा परेशान हो गए कि किसकी पूजा की जाए, और वो इस समस्या का समाधान पाने पहुंचे महादेव के पास। महादेव ने उनकी बात सुनी और कहा कि जो इस सृष्टि का चक्कर सबसे पहले लगा कर आएगा, बस वही देवों का प्रथम देव कहलाएगा। ये सुनना था कि कार्तिकेय अपने वाहन मयूर पर सवार होकर निकल पड़े विश्व भ्रमण के लिए, और गणेश का वाहन तो मूषक था, तो गणेश जी कहाँ जाते? उन्होंने, क्योंकि वो बुद्धिदाता हैं भाई, तो अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किया और अपने माता पिता के चक्कर लगाने लगे। बहुत जल्दी जल्दी वो चक्कर लगा रहे थे, तो शिव और पार्वती जी ने उनसे कहा कि गणपति क्या कर रहे हो? उन्होंने कहा, मैं तो सृष्टि का भ्रमण कर रहा हूँ, मेरी तो पूरी दुनिया आप ही दोनों हैं। बस तभी से महादेव ने गणपति को वरदान दिया कि तुम्हें ही प्रथम देव कहा जाएगा और तुम्हारे बिना कोई भी पूजा अधूरी मानी जाएगी। तो आइए गणपति को नमन करते हुए उनसे कहते हैं कि हम सबके घरों में विराज कर हमारे घर को शुद्ध करें। सुनते रहिए रेडियो प्रस्वानी सताक्षी के साथ, आप सुन रहे हैं भक्ति सागर।

कहते हैं कि वो इतने व्यस्त हैं कि वो मंदिर नहीं जा पाते या विधि विधान से पूजा नहीं कर पाते। तो देखिए दोस्तों, हमारे शास्त्रों में सबसे श्रेष्ठ पूजा मानी गई है मानस पूजा, यानी अपने मन के मंदिर में ईश्वर को स्थापित करना। ना तो फल फूल की आवश्यकता और ना ही किसी सामग्री की, केवल अपने मन के शुद्ध भावों से ईश्वर का स्मरण करना। शबरी के पास कोई बड़े अनुष्ठान की व्यवस्था नहीं थी, केवल भाव थे। ईश्वर वस्तुओं से नहीं, आपके भावों से आपकी भक्ति को पहचानते हैं। अगर मन में शुद्धता है तो आपका हृदय ही आपका सबसे बड़ा मंदिर बन जाता है। और उसी पावन हृदय के नाम सुनते हैं ये अगला गीत। हमारे साथ सुनते रहिए भक्ति सागर रेडियो प्रस्थानी 1701 AM पर।

भक्ति की धारा में बस हम और आप बहे चले जा रहे हैं। भक्ति सागर सुन रहे हैं आप रेडियो ब्रिस्वानी पर इस सुबह सताक्षी के साथ। भक्ति के इस अनमोल सफर को आइए लेकर चलते हैं आगे इस एक और गीत के साथ। हमारे साथ सुनते रहिए भक्ति सागर और रहिए रेडियो ब्रिस्वानी पर।

आराधना में एक बार फिर से स्वागत है आपका रेडियो बुला मस्ती पर। सताक्षी आपके साथ है। सज्जनों ने क्या खूब कहा है ना भक्तजनों कि न धन चाहिए न धाम चाहिए, न धन चाहिए न धाम चाहिए, मन को तो बस हरि का नाम चाहिए। जब हम सुबह सुबह ईश्वर के सामने हाथ जोड़ते हैं तो हमें उनसे कुछ मांगना नहीं चाहिए बल्कि केवल उनका धन्यवाद करना चाहिए। ये जीवन, ये सांसें और आज का ये नया दिन सब उन्हीं की अनुकंपा है। जब मन में कृतज्ञता का भाव होता है तब भक्ति स्वयं जागृत हो जाती है। तो आइए मन को और शांत करते हैं इस एक और प्रभाती भजन के साथ। सुनते रहिए आराधना।

लखनऊ यूपी इंडिया से सताक्षी के साथ आप सुन रहे हैं रेडियो बुला मस्ती पर आराधना। प्रभु की भक्ति में डूबे हम और आप अपने मन को और निर्मल कर रहे हैं, ये निर्मलता इस गाने के साथ और बढ़ेगी। सुनते रहिए रेडियो बुला मस्ती।

सज्जनों, यूं तो हर दिन आता है और गुजर जाता है, और हर दिन के साथ हमारी इच्छाएं बढ़ती चली जाती हैं। कहते हैं मनुष्य की इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती, एक खत्म होती भी है तो दूसरी उसके खत्म होने से पहले ही आ खड़ी होती है, और इसीलिए मनुष्य कभी संतोष का अनुभव नहीं कर पाता। लेकिन जब तक इच्छाएं रहेंगी और संतोष मिलेगा नहीं, तब तक आपको ईश्वर की प्राप्ति भी नहीं होगी, क्योंकि ईश्वर तो उसी के पास है जिसके पास संतोष है। तो अपनी इच्छाओं की दौड़ में थोड़ा रुककर संतोष का अनुभव कीजिए। आज सोच लीजिए कि आप किसी की निंदा नहीं करेंगे, और अपनी वाणी से, अपनी बातों से आप किसी का दिल नहीं दुखाएंगे। जब हमारी वाणी और विचार पवित्र होते हैं तो ईश्वर की कृपा अपने आप हमारे जीवन में बहने लगती है।

आप भक्ति सागर के पवित्र पावन सफर को यहीं पर विराम देने का वक्त आ गया है। भक्तजनों, मैं तो जा रही हूँ, लेकिन आप भक्ति की लौ अपने दिलों में यूं ही जलाए रखिएगा, यूं ही ईश्वर के भजनों में, उनके मंत्रों में लीन रहिएगा, ताकि ईश्वर आपको अपना मान ले। अगर निस्वार्थ होकर उनका ध्यान करेंगे तो अवश्य ही वो आपको प्राप्त होंगे। मुझे दीजिए विदा और आप डूबे रहिए भक्ति रस में। जय श्री राम।

0: है रेडियो 79.1 जिसके द्वारा आप हर रोज हमारे हिंदुस्तानी कार्यक्रम को सुनते हैं। याद रहे हमारा टेलीफोन नंबर है 3279-1701, 3279-1701।
1: ये है रेडियो 79.1 ब्रिस्बेन और आपके साथ फिरोज खान। हमारे स्टूडियो में रविवार के सुबह 7 बज चुके हैं, 7 से लेकर 8 बजे तक हमारा खास इस्लामिक प्रोग्राम जिसमें आप सुन सकते हैं 7 से कुछ चुने हुए हम्द, नात और कव्वालियां, और फिर उसके बाद आपके लिए हम पेश करते हैं हमारा रेगुलर सेगमेंट सवाल और जवाब मौलाना फजलदाद के साथ। तो चलो शुरुआत करते हैं कुछ चुने हुए हम्द, नात और कव्वाली के साथ, उसके बाद मौलाना फजलदाद के साथ सवाल और जवाब, हमारा रेगुलर इस्लामिक प्रोग्राम।

0: अभी आप सुन रहे थे कुछ चुने हुए हम्द, नात और कव्वाली, जिसको हम पेश करते हैं हर रविवार की सुबह 7 बजे से। उससे पहले आप सुनते हैं कुछ चुने हुए डिवोशनल संगीत। रेडियो ब्रिजवाणी 1701 ब्रिस्बेन, और हर सप्ते की तरह एक बार फिर आपकी खिदमत में आज सुबह के इस्लामिक प्रोग्राम।
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
2: پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم
2: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے

0: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
1: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
0: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
1: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड पीवा देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं 100% पीवा क्रीम से, 99.9% पीवा मिल्क फैट से, और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
0: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
1: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
2: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400664435 पर, याद रहे 0400664435 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
3: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है, सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।
4: Some numbers carry weight beyond what you see. Q11700, the master number of Vedic tradition, a heritage Queensland plate, first issued in 1922, a piece of Queensland history with full provenance, owned outright, transfer ready. For the buyer who understands that the number you carry is a statement of who you are, Q Plate Sales. Inquire at qplatesales.com.au. It's not just a number, it's a statement.

फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल डीवीडी, सीडीज, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशंस विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा, ओपन डेली फ्रॉम 9 AM। टेलीफोन रानी क्रिएशंस ऑन 3391-0622 और विजिट देयर वेब पेज rani creations.com। द वन स्टॉप बॉलीवुड फैशन एंड एंटरटेनमेंट स्टोर, वेल नोन फॉर इट्स क्वालिटी सर्विस एंड रीजनेबल प्राइसेस।

कृष्ण कृपा श्रीमूर्ति ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा स्थापित अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ अर्थात इस्कॉन की ओर से प्रस्तुत किया जा रहा है। आध्यात्मिक, धार्मिक, सामाजिक और पारिवारिक उद्देश्य, आपकी सेवा में वेदवाणी।

0: हरे कृष्णा। प्रिय श्रोतागण, आज के इस वेदवाणी कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आप सभी को इस नंद किशोर दास का अभिवंदन। अपने जीवन की समस्या को सुलझाने के लिए भगवद गीता में से श्री कृष्ण की सलाह को लेकर आज हम आपकी सेवा में एक बड़ा ही दिलचस्प वार्तालाप प्रस्तुत करते हैं, जो अभी हाल ही में इस्कॉन संस्था के माननीय भक्त गौरंग दास प्रभु जी और गुंजन के मध्य में हुआ था।
1: हम हमेशा बहुत टेक्निकल, बहुत मेडिकल बातें करते हैं इस टेबल पे, और बहुत डॉक्टर्स आते हैं, एक्सपर्ट्स आते हैं, बट आज हम लाइफ को एक बहुत ही डिफरेंट एंगल से देखने वाले हैं। वेरी एक्साइटेड फॉर दैट एंड सो प्लीज टू मीट यू।
2: धन्यवाद। एक दृष्टि से WHO ने भी डिफाइन किया है, परफेक्ट डेफिनेशन ऑफ हेल्थ इज कि शरीर, मन और आत्मा तीनों के समन्वय को ही पूर्ण स्वास्थ्य की परिभाषा दी है। और मैं कहता हूँ भाई, भारत में 70,000 अस्पताल हैं लेकिन 20,00,000 के ऊपर मंदिर हैं। तो मंदिर क्या है? मन का अस्पताल ही है।
1: अरे वाह।
2: तो एक दृष्टि से आप देखो तो मैं भी हेल्थ केयर में हूँ।
1: आज का ये एपिसोड शुरू करने से पहले मैं एक इंटेंशन सेटिंग करना चाहती हूँ, ताकि जितने भी लोग हमें सुन रहे हैं उनको ये पता चल सके कि इस क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि गीता एक रिलीजियस टेक्स्ट बुक ही है, बल्कि मेरे हिसाब से गीता में जो ज्ञान है वो एक फिलॉसफी है। वो हमारे डेली लाइफ के चैलेंजेस से डील करने में हमें मदद करती है, जो कि किसी भी स्कूल, कॉलेज या किसी भी टेक्स्ट बुक से नहीं मिल सकता। तो जैसे श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का एक ज्ञान देने के लिए बैटल फील्ड चूज किया, आज की डेट में हम सबके दिल और दिमाग में वो उस तरह का एक बैटल फील्ड है। तो गीता के वो कौन से लेसन्स हैं या क्या वो टीचिंग्स हैं जो हमें ये डेली लाइफ चैलेंजेस, स्ट्रेस, एंग्जाइटी, अटैचमेंट, डिटैचमेंट से डील करने में मदद कर सकते हैं, ये हम जानना चाहते हैं।
2: हम लोग सभी के जीवन में प्रति क्षण संघर्ष ही चल रहा है। एवरीबडी इज कॉट इन कॉन्फ्लिक्ट्स। भगवान भी चाहे तो हिमालय में जाकर ऋषि मुनि संतों को ये ज्ञान दे सकते थे, लेकिन उन्होंने कुरुक्षेत्र की रणभूमि के बीचों बीच 64 करोड़ सैनिकों के बीच, जो अस्त्र शस्त्र से युक्त जितने क्षत्रिय योद्धा थे उनके बीच, एक गृहस्थ अर्जुन जिनकी कई पत्नियां थीं, बच्चे थे, व्यवसाय से वो एक राजा थे, तो ऐसे व्यक्ति को उन्होंने धर्म का सबसे बड़ा ज्ञान दिया। लोग कई बार पूछते हैं कि भाई ये गीता का सार है क्या, भगवद गीता के ज्ञान को मैं अपने जीवन में उतार कर मुझे क्या परिवर्तन प्राप्त होगा। मैं अस्पताल देखता हूँ तो जानता हूँ कि भाई शरीर की पीड़ा दूर करने के लिए मैं वहां जाऊं। अगर लाइब्रेरी देखता हूँ तो मुझे लगता है कि अज्ञान के अंधकार को दूर करने के लिए वहां जाकर कुछ किताबें पढ़ूं तो वो दूर होगा। कोई होटल को देखा तो लगता है कि भाई यात्रा के बीच में वहां पर रुक सकता हूँ। तो हर मार्केट सेगमेंट का अपना एक वैल्यू होता है जो कि आपके जीवन के किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है।
1: बिल्कुल।
2: लोग उदास हैं, मानसिक रूप से त्रस्त हैं, मनोरंजन के खोज में हैं, ज्ञान के खोज में, तो आपके चैनल को देखकर अपना ज्ञान वर्धन कर रहे हैं। तो जो भी व्यक्ति जीवन में कुछ कर रहा हो तो उसका परिणाम क्या है और कौन सी समस्या का वो समाधान कर रहे हैं और क्या कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, ये क्लैरिटी रहती है। केवल उस एक शब्द को छोड़ के जो आपने अभी यूज किया, रिलीजन, भगवद गीता वास्तव में क्या है और रिलीजन क्या है और दोनों के बीच समन्वय क्या है, इसको समझाते हुए मैं अपनी बातों को रखना चाहता हूँ। आज व्यक्ति अपने जीवन में वो अपनाना चाहता है जिससे उसको लाभ हो, उसके परिवार को लाभ हो, उसके जीवन में परिवर्तन आए।
1: बिल्कुल।
2: सो द बिगेस्ट फैक्टर विच इज अफेक्टिंग एवरीबडी इज एंग्जाइटी एंड फियर। तो लोगों के जीवन में सबसे बड़ा जो तत्व है वो है तनाव और चिंता। महाभारत में वर्णन किया गया है, आहार, निद्रा, भय, मैथुन, चार बातें सबके जीवन में हैं, आहार, निद्रा, मैथुन और चौथा है भय। ये पशु और मनुष्य सब में कॉमन है, लेकिन ये चारों में, आहार का, निद्रा का और मैथुन का, एक सीमित अवधि है, देयर इज अ लिमिटेड टाइम। लेकिन भय एक ऐसा तत्व है जो 24/7 चलता है। तो इसलिए अगर आप समझो कि धर्म क्या है, रिलीजन क्या है, गीता क्या है, तो इन वन वर्ड इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड, गीता इज प्रोवाइडिंग द एंटीडोट टू फियर, भय के निवारण के लिए, चिंता के निवारण के लिए, असुरक्षा के निवारण के लिए, हर प्रकार के ऐसे तनाव के निवारण के लिए अगर कोई एक पुड़िया है वो है गीता का ज्ञान। तब आप कहोगे कि भाई इतना सिंपलिस्टिक तरीके से तो कभी हमने सोचा ही नहीं, अगर ऐसा होगा तो सब लोग लपकेंगे गीता को पकड़ने के लिए। और ये बात फैक्ट है कि प्रभुपाद जी जब लंदन पहुंचे तो किसी ने उनको पूछा, स्वामी जी आप लंदन क्यों आए हो? तो प्रभुपाद जी ने कहा कि भाई अंग्रेजों ने भारत से लगभग 300 वर्षों से हीरा मोती सोना चांदी लूट लूट के लेके गए, लेकिन भारत का सबसे अनमोल रत्न गीता लूटना भूल गए, वो हम देने आए, होम डिलीवरी करने आए। तब से लेकर आज तक 50 वर्षों में इस्कॉन ने लगभग 55 करोड़ भगवद गीता वितरित कर दिया 80 भाषाओं में, विच मीन्स देयर इज अ ह्यूज डिमांड। 1300 मंदिर हमारे चल रहे हैं 120 देशों में। इसका अर्थ है कि जो हिंदू सनातन धर्म के परिवारों में नई जन्म लिए हैं वो भी इससे प्रभावित हो रहे हैं। मीन्स भगवद गीता का ज्ञान और उसके अंतर्गत जो प्रक्रिया दी गई है, प्रणाली दी गई है, वो लोगों के हृदय के अंदर के भय और असुरक्षा को दूर करती है।
1: आपने बिल्कुल ठीक कहा कि डर एक ऐसा इमोशन है जो हर इंसान को कॉन्शियसली या सबकॉन्शियसली लगा रहता है। किसी को फेलियर का डर, किसी को रिलेशनशिप्स में डर, किसी को फैमिली में कोई लॉस ना हो जाए उसका डर, किसी को अपनी हेल्थ का डर, किसी को सक्सेस का डर, फाइनेंस का डर। तो गीता में इस डर के साथ डील करने के लिए क्या लिखा गया है?
2: भय का सबसे बड़ा कारण क्या है? वो है परिवर्तन,
1: चेंज।
2: चेंज और कैसा चेंज? हमारे आइडेंटिटी में चेंज, चेंज इन अवर आइडेंटिटी।
1: चेंज से लोग इतना घबराते क्यों हैं?
2: क्योंकि वो आइडेंटिटी के बिना हम लोग नहीं रह सकते, और वो आइडेंटिटी कई पहलुओं में बनती है। तो सबसे पहला आइडेंटिटी है, मान लीजिए बॉडी। बॉडी इज यंग, बॉडी इज गुड लुकिंग, बॉडी इज मेल, बॉडी इज फीमेल, बॉडी इज दिस दैट। तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर जब रिपोर्ट देता है और कहता है ट्यूमर हो गया या कैंसर हो गया, तो व्यक्ति घबरा कर क्यों निकलता है? क्योंकि डॉक्टर से मिलने के पहले उसके मन में यह भाव था कि आइडेंटिटी थी शरीर को लेकर, मैं स्वस्थ हूं, ये मेरी आइडेंटिटी। लेकिन डॉक्टर ने जब रिपोर्ट दिया तो डॉक्टर ने कहा भाई 6 महीने रह गए, तो फिर तुरंत मेरा आइडेंटिटी बदल गया कि मैं स्वस्थ नहीं हूं, मैं तो बीमार हूं और मृत्यु के निकट हूं। तो वो अचानक जो परिवर्तन आता है, दैट इज द सडन चेंज इन आइडेंटिटी। तो इसलिए जब व्यक्तित्व में परिवर्तन आता है, वो परिवर्तन तनाव का कारण बनता है, बिकॉज योर आइडेंटिटी इज चेंजिंग। वैसे ही आपकी आइडेंटिटी पति और पत्नी के साथ विद अ पार्टनर, वो एक आइडेंटिटी जब बदलता है तो फिर अचानक एक दूसरे प्रकार का तनाव आता है। और इसलिए आज के परिवेश में जब रिलेशनशिप्स समस्याओं में जा रहे हैं, प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, तो लोगों के जीवन में तनाव बढ़ रहा है, बिकॉज आइडेंटिटी इज चेंजिंग। सिमिलरली विद किड्स, आत्मजाया सुता बच्चे, उनके प्रति एक आइडेंटिटी है कि वो इस तरह से पढ़ें, इस तरह से बिहेव करें, ऐसे उनकी जीवन शैली हो, ऐसे उनका विवाह हो, उनके हैबिट्स ऐसे हो,
1: एक्सपेक्टेशन जुड़ी है हमारी हर चीज के साथ,
2: आइडेंटिटी। अगर वो बच्चा फेल होता है तो माता पिता को लगता है कि मैं फेल हो गया। अगर वो बच्चा कुछ और अनाप शनाप आदतों में लग जाता है तो वो एक आइडेंटिटी है, तो उससे हम हट नहीं सकते। तो इसलिए आत्मजाया सुता आगार, अपने घर के साथ, पशु गाड़ी के साथ, द्रविण धन के साथ, आपका आइडेंटिटी बोल रहा है मैं बिजनेस पर्सन हूं लेकिन बैलेंस शीट दिखा रहा है मेजर लॉसेस है, डेट है। तो कई बड़े बड़े डेट्स लेने के बाद लोग अपने आप को जीवित नहीं रख पाते। कैफी कॉफी डे वाला जो व्यक्ति था उसने आत्महत्या कर लिया, और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स है। द पीपल ड्राउंड इन द डेट ओशन एंड दे कुड नॉट हैंडल दैट आइडेंटिटी चेंज। हार्ट आइडेंटिटी में बता रहा हूं, शरीर, पति पत्नी, बच्चे, घर, गाड़ी, धन, सामाजिक स्वीकृति, लोग केवल अनफॉलो कर देते हैं तो लोग बौखला जाते हैं। लगभग 6 महीने पहले एक नवयुवती लड़की ने आत्महत्या कर लिया क्योंकि उसको 1 मिलियन इंस्टाग्राम फॉलोअर्स नहीं मिल रहे थे। सब जगह मीडिया में छाया हुआ था। इट्स अनफॉर्चुनेट, लेकिन सोशल एक्सेप्टेंस एंड रिजेक्शन इज ऑल्सो पार्ट ऑफ दैट। एंड देन द 8th आइडेंटिटीज कैरियर इन्फ्लुएंस, आपका कितना इन्फ्लुएंस है, आपका कितना कंट्रोल है। और ये कॉन्स्टेंटली 8 सुबह से रात तक बदलते रहते हैं। इन 8ों को हम एक साथ कंट्रोल करना चाहते हैं 24 घंटे में, लेकिन किसी एक व्यक्ति के लिए संभव नहीं है इन 8ों को अपनी अपेक्षा के अनुसार संभालना। इन 8ों बदलते हुए आइडेंटिटीज को ही कहते हैं चिंता। तो इसीलिए केवल भगवद गीता ही है जो चिंता का इतना विस्तारित रूप से और गहन रूप से विश्लेषण करे।
1: मैं ये जानना चाहूंगी कि कृष्णा ने इस चेंज, इस आइडेंटिटी चेंज के बारे में क्या कहा, अर्जुन को किस तरह से समझाया। पर उससे पहले मेरे अपने कुछ सवाल हैं। किसी भी प्रकार के चेंज के लिए बहुत जरूरी है अपनी पुरानी एक जो हम आइडेंटिटी लेकर बैठे हुए हैं उससे डिटैच होना। अगर नॉट जस्ट आइडेंटिटी, अपने एक्शंस, अपने कंफर्ट से भी वो डिटैचमेंट जरूरी है। अगर किसी को अपनी बॉडी को चेंज करना है, अपनी किसी बीमारी को ठीक करना है, तो शायद उसको जिस तरह का खाना पीना लाइफस्टाइल पसंद है उससे डिटैच होना होगा। अगर किसी की कोई करियर एस्पिरेशन है, उसके लिए उसको बाहर जाना है, ट्रैवल करना है, तो शायद उसको अपने दोस्तों से, अपनी फैमिली से डिटैच होना होगा। इसी तरह से कई बार डिटैचमेंट बहुत जरूरी होती है, पर डिटैचमेंट बहुत मुश्किल होती है। तो गीता में क्या इसके लिए कोई वर्णन है? क्या कृष्णा ने डिटैचमेंट के बारे में कुछ बताया है जो आज हम सीख सकते हैं?
2: त्यागो ही पुरुष व्याग्र त्रिविध संप्रकीर्तित, कृष्ण कहते हैं। ओ टाइगर अमंगस्ट मेन, अर्जुन को ये संबोधित करते हैं कि आप पुरुषों में शेर हो। तो आचार्यगण कहते हैं ऐसा क्यों कहा? क्योंकि कृष्ण कहना चाहते हैं कि ये वैराग्य एक ऐसा विषय है जिसको सुन के बड़े बड़े कंपित हो जाते हैं। कुछ छोड़ना हो, बदलना हो, परिवर्तन लाना हो, तो उस विचार से लोग घबरा जाते हैं। तो इसलिए कहते हैं अर्जुन आप नहीं घबराओगे, आप शेर दिल हो, इसलिए पुरुष व्याघ्र शब्द का प्रयोग किया गया है। तो द कॉन्टेक्स्ट इज द सब्जेक्ट ऑफ वैराग्य और रेनन्सिएशन इज टफ, पहला। फिर दूसरा, भगवान कहते हैं 8वें अध्याय के अंत में, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। सबसे बड़ा वैराग्य क्या है? सबसे बड़ा वैराग्य किसी वस्तु को छोड़ना नहीं, किसी व्यक्ति को छोड़ना नहीं, किसी धन दौलत इत्यादि को छोड़ना नहीं। सबसे बड़ा वैराग्य है अपने मत को परिवर्तित करना, टू बी एबल टू गिव अप वन्स ओपिनियन, टू बी एबल टू गिव अप वन्स चॉइसेस, वन्स नैरेटिव, वन्स एटीट्यूड, अपनी विचारधारा, अपनी मानसिकता। ये सबसे बड़ा वैराग्य है। और इसीलिए मानसिक परिवर्तन अर्थात विचारों में परिवर्तन, जब विचारों में परिवर्तन आएगा तब व्यक्ति में परिवर्तन आएगा, जब व्यक्ति में परिवर्तन आएगा तब व्यवस्था में परिवर्तन आएगी। और सारे बिजनेस स्कूल्स में केवल व्यवस्था परिवर्तन के ऊपर ही चर्चा हो रही है, इसलिए स्थायी नहीं है। माता पिता चाहते हैं बच्चे क्या बने? सक्सेस, विजय, विजय, विजय, इसी की गूंज है। लेकिन गीता में कहा गया है उस विजय के पहले 4 दूसरे पहलू हैं, और वो 4 पहलू का जब फाउंडेशन बनेगा तब फिर ऊपर विजय की पताका चलेगी। वो 4 भाग क्या है? सबसे पहले विनय, नम्रता। जब विनय हो, नम्रता हो, मैं समझूं कि भाई मैं जीव हूं, एक ईश्वर भी है, प्रकृति भी उनके अधीन है, मेरे अधीन नहीं, मैं केवल ट्रस्टी हूं, निमित्त हूं, उस विनय के आधार पर फिर आता है वैराग्य। वैराग्य अर्थात मैं समझूं कि हाँ, आई एम नॉट इन कंट्रोल, समबडी एल्स इज ऑल्सो इन कंट्रोल, अर्थात मैं इच्छा शक्ति रख सकता हूं लेकिन सर्वशक्तिशाली नहीं हूं। जब हमारे अंदर विनय और वैराग्य आए तब फिर तीसरा आता है विवेक शक्ति का प्रयोग। तब मैं समझूं वॉट इज विद इन माई सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस, वॉट इज विद इन माई सर्कल ऑफ कंट्रोल. क्या मेरे नियंत्रण में है, क्या मेरे नियंत्रण में नहीं है. तब मैं समझ सकता हूं कि भाई अगर हमारे बच्चे ऐसे हैं, पति पत्नी ऐसे हैं, व्यवस्था ऐसी है, देर इज अ लिमिट टू हाउ मच आई कैन चेंज थिंग्स.
1: राइट.
2: तो इसलिए उसके अनुसार विवेक शक्ति का प्रयोग, डिस्क्रिमिनेशन, मेकिंग द राइट चॉइसेस अकॉर्डिंगली.
1: ओके.
2: तो जब विनय और वैराग्य होगा तब विवेक सही प्रकार से हम प्रयोग कर पाएंगे. जब विनय वैराग्य और विवेक होगा तब आएगा विश्वास. श्वास मतलब ब्रीदिंग. विश्वास अर्थात विशेषण श्वास. विशेष रूप से श्वास जब लिया जाए उसे कहते हैं विश्वास. जब मन शांत हो तो अपने आप श्वास भी बिल्कुल शांत हो जाती है. जब आप एजिटेट रहो तो आपकी श्वास भी बढ़ने लगती है. सो विश्वास मीन्स यू आर सो काम एंड कॉन्फिडेंट कि चाहे कितनी विपत्ति क्यों ना आए लेकिन विपत्तो तस्य संपत्ति, ये मेरे संपत्ति का ही भविष्य का कारण बनेगा. तो उसे कहते हैं विश्वास, कॉन्फिडेंस, कन्विक्शन, क्लैरिटी इन द मिडस्ट ऑफ कंफ्यूजन एंड केओस. तब जब विनय वैराग्य विवेक विश्वास हो तब फिर विजय आएगा. तो इसलिए वैदिक सनातन धर्म के अंतर्गत सीधा शैक्षणिक प्रणाली में विजय विजय विजय का ढिंढोरा नहीं पीटा जाता. पहले विनय, फिर वैराग्य, फिर विवेक, फिर विश्वास, फिर
1: विजय.
2: विजय
1: क्या इन्हीं चीजों के बारे में श्री कृष्ण ने अर्जुन को भी समझाया था जब वहां पर ये डिसीजन लेना था कि अब वो टाइम आ गया है दैट यू शुड बी रेडी फॉर द डिटैचमेंट.
2: अर्जुन का प्लान था कि मैं युद्ध नहीं करूं और पूरी गीता सुनाई गई अर्जुन के प्लान को बदलने. तो अर्जुन को वैराग्य दिलाया गया कृष्ण के द्वारा और फिर अर्जुन समझे तब फिर उन्होंने अपनी योजना बदली और फिर ये युद्ध संपन्न हुआ. तो इसलिए हम सभी अपने दैनिक जीवन में अपने हाथ में गांडीव लिए, अस्त्र शस्त्र लिए, टैलेंट लिए, सक्सेस रिकॉर्ड लिए, अपने हर प्रकार के एसेट्स को लिए, कभी कभी उस इच्छा शक्ति को व्यक्त नहीं कर पाते. सो वी गो थ्रू पैरालिसिस थ्रू एनालिसिस. जैसे अर्जुन वॉज इन टू डिसीशन मेकिंग पैरालिसिस बिकॉज ऑफ आइडेंटिटी क्राइसिस. तो हम लोग भी कभी कभी ऐसी परिस्थिति में आ जाते हैं. इसीलिए गीता का ज्ञान हमें बताता है कि अर्जुन के अंदर जो आइडेंटिटीज के बीच में युद्ध चल रहा था, अर्जुना's identity as a warrior while seeing Duryodhan was in conflict with Arjuna's identity as a grandson while seeing Bhishma, was in conflict with Arjuna's identity as a student while seeing Drona. तो अर्जुना को युद्ध भूमि में तीन अलग अलग लोगों को देखकर तीन आइडेंटिटीज उनके आपस में अंदर युद्ध कर रहे थे. अर्जुन के अंदर का शिष्य और पोता और धनुर्धर तीनों आपस में युद्ध कर रहे थे और इसलिए अर्जुना गॉट पैरालाइज्ड बाय द इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट ऑफ आइडेंटिटीज. इसलिए कृष्ण ने गीता सुनाई ये बताने कि डू नॉट अंडर एस्टिमेट द इंटरनल आइडेंटिटी कॉन्फ्लिक्ट्स बिकॉज इफ यू कैन नॉट रिजॉल्व दैट यू कैन बी एज पावरफुल एज अर्जुना, यू विल बी टोटली पैरालाइज्ड.
1: ये एक्चुअली में हर इंसान के साथ होता है. एक इंसान के ये तीन आइडेंटिटीज तो हैं ही. जब वो अपने ऑफिस में जाता है तो उसका एक करियर है, उसकी एस्पिरेशंस हैं, उसकी जॉब, उसकी सैलरी, उसका बॉस, उसके कॉलीग्स हैं. घर में आता है तो वाइफ है, बच्चे हैं, माता पिता हैं. बाहर जाता है तो दोस्त हैं, उनके साथ इंजॉय करना है, बाहर निकलना है, घूमना फिरना है. तो ये तीन आइडेंटिटीज हम हर कोई कैरी करके चलता है और इन्हीं तीनों को बैलेंस करने के चक्कर में जो दुनिया भर के स्ट्रेसेस हैं, मिसमैनेजमेंट है, कभी किसी से लड़ाई झगड़ा, प्रमोशन डिमोशन और यही सब चलता रहता है.
2: इसी तीन को मैंने आठ के रूप में अनपैक किया था. दैट शरीर, पति पत्नी, बच्चे, घर, आपकी गाड़ी,
1: right.
2: आपका बैंक बैलेंस,
1: अपनी डिजायर्स,
2: सामाजिक स्वीकृति,
1: बिल्कुल,
2: और करियर. ये पूरा आठ का आठ जब लेके चले तब समझो कि एक नाइन्थ आइडेंटिटी को जीवन में स्थान देना है, वो है आत्मा, स्पिरिट। इसलिए उसको कहते हैं स्पिरिचुअल नॉलेज, आध्यात्मिक ज्ञान।
1: ब्यूटिफुल। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि इस साल अगर आपका कोई भी हेल्थ गोल है जिसे आप पूरा करना चाहते हैं, लाइफस्टाइल से जुड़ी कोई भी प्रॉब्लम जैसे कि डायबिटीज, थायराइड, ब्लड प्रेशर को रिवर्स करना चाहते हैं या फिर अपने वेट को मैनेज करना चाहते हैं, तो आप हमारे प्रोग्राम आई एम वाओ का फायदा ले सकते हैं, जिसमें आपको एक डेडिकेटेड न्यूट्रिशनिस्ट मिलते हैं जो आपके साथ काम करते हैं, हर हफ्ते आपको आपके प्रेफरेंसेस और चॉइस के हिसाब से डाइट प्लान बना के देते हैं। आपको हमारी ऐप का एक्सेस मिलता है जिसमें ढेरों हेल्दी रेसिपी वीडियोज, वर्कआउट वीडियोज, योगा वीडियोज, एफर्मेशंस, ये सभी फीचर्स कॉम्प्लीमेंट्री मिलते हैं। इस प्रोग्राम की बाकी सभी डिटेल्स जानने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर विजिट कर सकते हैं। अब मैं बात करना चाहती हूँ कुछ ऐसे रियल लाइफ चैलेंजेस के बारे में जो एक इंसान को आगे बढ़ने से रोकते हैं, जिसमें सबसे पहले आता है फेलियर का डर। पता नहीं ये कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, मुझसे नहीं हो पाएगा, ये मेरे बस की नहीं है, ये मेरे किस्मत में नहीं है। तो एक फेलियर का डर की वजह से बहुत लोग एक्शन लेने से ही डरते हैं। बहुत लोग खुद को औरों से कंपेयर करने लगते हैं कि उसकी लाइफ मेरे से बेटर है, वो मेरे से ज्यादा अच्छा दिखता है, वो मेरे से ज्यादा अच्छा अर्न करता है, उसकी जॉब मेरे से ज्यादा अच्छी, उसकी फैमिली मेरे से ज्यादा अच्छी है। सो एक कॉन्स्टेंट कंपेरिजन, और स्पेशली सोशल मीडिया पे तो अभी कंपेरिजन और ज्यादा बढ़ गया है, सेल्फ डाउट लोगों को बहुत ज्यादा हो गया। तो इन सब इमोशंस की वजह से लोग अपनी लाइफ में ग्रो नहीं कर पा रहे। कृष्णा ने भगवद गीता में इन सब चीजों के लिए क्या सॉल्यूशंस दिए हैं?
2: तो भगवद गीता के अंतर्गत अगर समरी में समझना चाहें तो भगवान कहते हैं कि कैसे आप अपने जीवन में टॉलरेट कर सकते हो सहिष्णुता। क्योंकि कोई भी कर्तव्य निभाना हो, जैसे अर्जुन के सामने कर्तव्य था युद्ध करना, तो सबसे बड़ी समस्या आती है कि कोई भी कर्तव्य पालन में द्वंद्व आएंगे, समस्याएं आएंगी, चैलेंजेस आएंगे। तो चार प्रकार के सहिष्णुताओं का वर्णन भगवद गीता में किया गया है। अब भगवद गीता को आप अलग अलग पहलू से, दृष्टिकोण से देख सकते हो, लेकिन ये एक प्रैक्टिकल दृष्टिकोण है। जब हर व्यक्ति, बिजनेस प्रोफेशनल, एंटरप्रेन्योर, नौकरी करने वाला, गृहिणी, माता पिता, बच्चे, स्टूडेंट, सभी अपने जीवन में उतार सकें। So what are these four aspects of Bhagavad Gita which summarize the Gita from one particular angle? क्योंकि गीता के हजारों एंगल है। तो आज के इस एपिसोड में जो एंगल है वो है पहला, द्वंद्व सहिष्णुता, टॉलरेटिंग डुअलिटी, हैप्पीनेस डिस्ट्रेस पेन प्लेजर सक्सेस फेलियर जय पराजय सुख दुख इत्यादि, इसे द्वंद्व कहते हैं। इस द्वंद्व को समझकर हमें चलना है कि चाहे व्यक्ति कितना भी प्रयास करे, ये द्वंद्व की परिस्थिति से नहीं बच सकता। द्रोणाचार्य ने अपना पुत्र अश्वत्थामा को खो दिया, लेकिन अश्वत्थामा वास्तव में मरे नहीं थे, लेकिन द्रोणाचार्य निस्सहाय होते होते साथ साथ निराश हो गए और वो आशाहीन होकर सारा अस्त्र छोड़कर वहां बैठ गए, और फिर कृष्ण के आदेश के अनुसार फिर उनके सर को धड़ से अलग कर दिया गया। वैसे ही पुत्र शोक अर्जुन को भी हुआ। Whatever Drona went through, Arjuna also went through. So Arjuna lost his son. Drona ने केवल अपने पुत्र के समाप्ति का समाचार सुना, लेकिन अर्जुन ने तो वास्तव में अपना पुत्र गंवा दिया, अभिमन्यु। तो अभिमन्यु की मृत्यु का समाचार सुन के अर्जुन भी बहुत निस्सहाय अवस्था में रोने लगे, विलाप करने लगे, लेकिन उनके साथ कृष्ण थे, और कृष्ण और कृष्ण के वाणी और कृष्ण के संदेश के कारण अर्जुन निस्सहाय परिस्थिति में होते हुए भी निराश नहीं हुए। तो इसलिए भगवद गीता का सर्वप्रथम संदेश यह है कि जीवन में द्वंद्व आते रहेंगे। आज कोई व्यक्ति बहुत धनवान है, कल हो सकता है कंगाल हो जाए, आज करोड़पति है कल रोड़पति हो जाए, आज कोई लोकप्रिय है कल लोग हो सकता है उसके ऊपर आलोचना करें। हम जैसी अपेक्षा करते हैं वैसा हमें नहीं मिलता। तो ऐसी परिस्थिति में निस्सहाय भले आप हो जाओ, लेकिन निराश नहीं होना है। यू मे बिकम हेल्पलेस बट डू नॉट बिकम होपलेस बिकॉज यू शुड रियलाइज द नेचर ऑफ दिस वर्ल्ड इज द्वंद्व. हमेशा सुख दुख, अच्छा बुरा, सर्दी गर्मी. तो इसलिए कृष्ण गीता में कहते हैं मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीत उष्ण सुख दुखदा आगमा आपायनो अनित्यस्तां तितिक्षस्व भारत. द्वंद्व सहिष्णुता का अर्थ कृष्ण इसमें बता रहे हैं कि द ग्रेटेस्ट कॉज ऑफ डिस्ट्रेस इज वी एक्सपेक्ट एवरी इंटरेक्शन टू बी प्लेजरेबल. पांच इंद्रियां हैं, आंखों से हम रूप को देखते हैं, कानों से हम ध्वनि को सुनते हैं, जिह्वा से स्वाद अनुभव करते हैं, नासिका से हम गंध को लेते हैं और त्वचा से हम स्पर्श करते हैं. तो इन पांच ज्ञानेंद्रिय जब किसी विषय के साथ संपर्क करे, व्हेन द आईज कनेक्ट विथ फॉर्म, व्हेन द नोज कनेक्ट्स विथ स्मेल, व्हेन द टंग कनेक्ट्स विथ टेस्ट, व्हेन द ईयर्स कनेक्ट विथ साउंड, द प्रॉब्लम इज नॉट इन द कनेक्शन, द प्रॉब्लम इज इन द एक्सपेक्टेशन. वी एक्सपेक्ट every interaction to only give pleasure. हमारी अपेक्षा होती है कि जो भी हमारा यह संपर्क हो वो केवल हमें सुख और आनंद दे. लेकिन भगवान कह रहे भाई स्टैटिस्टिकली अगर सिक्का रख के उसको उछाला तो उसमें स्टैटिस्टिकल प्रोबेबिलिटी हमेशा 50-50 होता है. तो भगवान कहते हैं कि भैया तुम लोग इतना गणित पढ़ के भी इतना तो समझो कि हर इंटरैक्शन में 50% प्रोबेबिलिटी दैट इंटरैक्शन विल बी मिजरेबल डिस्ट्रेस गिविंग. उस अपेक्षा को लेकर चलो. सो कृष्णा इज नॉट टेलिंग अर्जुना चेंज योर प्रोफेशन. कृष्णा इज टेलिंग अर्जुना एडजस्ट योर एक्सपेक्टेशन एंड देयरफॉर द होल एक्सपेक्टेशन शुड बी कि If I see a form, why should it always give pleasure? Sometimes it may give some pain also, 50% of the time.
1: Right.
2: है ना? तो इसलिए जो है कई बार लोगों को लगता है हम यहां जाए वहां जाए ये करें ये देखें वो देखें, लेकिन कई बार ऐसी परिस्थितियां देखनी पड़ेंगी जो आपने अपेक्षा नहीं की. पहले से उसकी अपेक्षा होनी चाहिए.
1: जिसकी आप अपेक्षा नहीं करना चाहते उसकी भी अपेक्षा होनी चाहिए.
2: सामाजिक संबंध में, पारिवारिक संबंध में हम अपेक्षा करते हैं कि जो मेरे साथ हो वो हमेशा ऐसे ही शब्द बोले जिससे मुझे सुख मिले. लेकिन इन एनी इंटरेक्शन, एनी रिलेशनशिप, 50% चांसेस यू विल हियर क्रिटिसिज्म और वर्ड्स एंड नैरेटिव्स विच यू फील अनफेवरेबल.
1: और उस चीज के लिए हमें अपने आप को मानसिक रूप से तैयार रखना जरूरी है.
2: क्योंकि आप ट्रेन में भी, क्राउडेड ट्रेन में चलते चलते भी मार खाते हो, और बॉक्सिंग रिंग में बॉक्सर भी मार खाता है. लेकिन बॉक्सर जब बॉक्सिंग रिंग में उतरता है तैयारी के साथ उतरता है कि मुझे मार खाना है और मारना है. तो उस समय जो सामने से चाहे कितना मुक्का भी लगे लेकिन वो तैयारी के साथ उतरा है. अगर आप सोचते हो कि मुझे हमेशा ही स्तुति मिलेगी तो कृष्ण को भी ये नहीं मिला सौभाग्य. शिशुपाल देख के उनको 99 गाली दे देता था और कृष्ण ने कहा था कि 100 के ऊपर जब जाएगा तब फिर मैं उसका वध करूंगा. लेकिन कृष्ण ने भी कई बार शिशुपाल के मुख से इतनी गालियां सुनी, कंस के मुख से इतनी गालियां सुनी. तो भगवान कहते हैं अरे मैं भी जब प्रकट होकर लीला करता हूं वृंदावन में, बचपन से लेके द्वारका तक और हस्तिनापुर तक, ऐसा नहीं कि आई हैव द लग्जरी ऑफ ओनली बीइंग प्रेज्ड. तो अगर मैं भी 10-12 गाली खा सकता हूं तो आप एक दो खा लो तो क्या प्रॉब्लम है. तो इसलिए इसको कहते हैं द्वंद्व सहिष्णुता, दैट इज द फर्स्ट कैटेगरी ऑफ टॉलरेंस.
1: मेरा एक सवाल है यहाँ पे, मैं जानना चाहती हूँ कि खुद को तैयार रखना, प्रिपेयर्ड रखना कि कुछ भी हो सकता है. जैसे आपने बोला कि हर पॉजिटिव के साथ उतना ही प्रोबेबिलिटी है नेगेटिव का भी. यहाँ पर अब एक और कॉन्सेप्ट आता है जिसे हम आजकल कहते हैं मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन. अच्छा सोचो, अच्छा बोलो, अपने बारे में अच्छा ही विजन करो, अच्छा एनविजन करो, अच्छा ही होगा. हम इस चीज को रिपीट करते हैं, मैनिफेस्ट करो. पर जब हम ये मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं कहीं ना कहीं हम अपने आप अपने ब्रेन को ये इस तरह की ट्रेनिंग दे रहे हैं कि तेरे साथ बुरा नहीं हो सकता, तेरे साथ अच्छा ही होने वाला है, जैसा तू चाह रहा है वैसा ही तुझे मिलने वाला है। तो क्या ये दोनों चीजें आपस में कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर रही? एक तरफ हम कह रहे हैं कि प्रिपेयर्ड रखो कि अच्छा भी हो सकता है बुरा भी हो सकता है, तैयारी दोनों चीजों की रखो, और एक तरफ ये जो मैनिफेस्टेशन है ये कॉन्सेप्ट हमें समझाता है कि सिर्फ अच्छे के बारे में सोचो, आपके मस्तक में जो एक भूमि है उसको इतना फर्टाइल रखो कि उसमें अच्छी ही चीजें ग्रो हो। तो ये तो थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्शन है ना, तो आपका इसके बारे में क्या कहना है?
2: गीता में 5 विषय का विश्लेषण है, ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल और कर्म। अब आप जो कह रहे हो वो है जीव, याद की आत्मा, व्यक्ति, प्रकृति को जो है XYZ तरीके से कंट्रोल करना चाहे या प्रकट करना चाहे या कुछ करना चाहे,
1: मैनिफेस्ट करना चाहे। कंट्रोल थोड़ा सा शायद इंटेंस हो जाएगा, कंट्रोल तो कोई नहीं कर सकता, पर हाँ वो अपने लिए इस तरह की चीजें इनवाइट करना चाहे, उन फ्रिक्वेंसी से मैच करना चाहे जो एग्जिस्ट कर रही है इस प्रकृति में, इस पृथ्वी पे।
2: कंट्रोल का अर्थ ये है कि अपनी इच्छा के अनुसार उसको प्रकट करना चाहे, तो उसी को गीता के दृष्टिकोण से कंट्रोल कहते हैं कि मैं अपनी इच्छा व्यक्त करूं और मेरी इच्छा प्रकट हो और उस इच्छा में कोई बाधा ना आए। तो इसको कह सकते हैं कि एक अच्छे पोशाक में आपने कंट्रोल शब्द को रख दिया। तो उसमें प्रकृति और उसके बाद काल और कर्म, तो जब जीव प्रकृति, काल और कर्म के ऊपर शोषण करने के लिए दृष्टिकोण से देख रहा है कि कैसे मैं ये करूं वो करूं, इसको प्रकट करूं उसको प्रकट करूं, लेकिन एक महत्वपूर्ण मुद्दा रह गया वो ऊपर जो है ईश्वर। तो जब जीव केवल अपने ही स्तर पर प्रकृति, काल और कर्म के साथ जूझे, इंटरैक्ट करे, चाहे उसका जो भी नाम आप दीजिए, लेकिन अगर इक्वेशन में ईश्वर नहीं है तो उसको कहते हैं भोग, और भोग का परिणाम होता है चिंता। चिंताम अपरिमेयाम च प्रलयंताम उपाश्रिता कामोपभोग परमा एतावत इति निश्चिताः। तो भगवद गीता में बड़ा ही स्पष्ट लिखा गया कि भाई चिंताम अपरिमेयाम, असीमित मात्रा में चिंता भी प्रकट होगी, क्योंकि अल्टीमेटली हमने दायित्व लिया है कि मैं ही हूं और हम ही सब कुछ करेंगे। तो ये भोग है। जब व्यक्ति समझता है कि मैंने तो सब कुछ किया लेकिन फिर भी बच्चे अपाहिज हो गए, या मुझे अचानक नौकरी से निकलना पड़ा, मार्केट से अचानक क्रैश हो गए, ये हो गया वो हो गया, कई परिस्थितियां हो जाती हैं कि हमारे समझ से परे, पांडवों के साथ भी हुआ, श्री रामचंद्र जी के साथ भी वनवास हुआ, तो इतिहास भी दिखाता है कि भाई सब कुछ अच्छा चले एंड दे लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर तो केवल उपन्यास में होता है
1: या फिर बॉलीवुड मूवीज में होता है।
2: तो उस समय व्यक्ति समझता है कि ऊपर भी कुछ है। तो जब ऊपर देखने लगे तो समझते हैं कि देर इज सम कंट्रोल बियॉन्ड मी, एंड व्हेन यू रियलाइज देर इज अ कंट्रोल बियॉन्ड मी, तब जाकर ईश्वर बीच में आते हैं। ईश्वर मतलब द कंट्रोलर। अब उस कंट्रोलर ईश्वर के साथ जब हम संबंध स्थापित करना चाहें उस संबंध को कहते हैं योगा। तो एक है भोगा, जब हम प्रकृति को नियंत्रित करें, और एक है जब ऊपर देखें उसको कहते हैं योगा। तो इस योगा के अंतर्गत कर्मयोग, ज्ञान योग, अष्टांग योग, भक्ति योग, ये सब योग की पद्धतियां भगवद गीता में विस्तृत रूप से दी गई हैं। तो इसलिए दूसरा आता है वेग सहिष्णुता। व्हाट प्रिवेंट्स यू फ्रॉम लुकिंग अप, व्हाट प्रिवेंट्स यू फ्रॉम हैविंग अ रिलेशनशिप विद ईश्वर? आपके हृदय के अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये भावनाएं आंतरिक रूप से हमें इतनी खींचने लगती हैं कि हमें लगता है कि बस इस प्रकार का भोग ही हमारे जीवन का लक्ष्य है।
1: हम हमेशा ये बात करते हैं कि एक इंसान को किस तरह का होना चाहिए, किस तरह के इमोशंस, किस तरह के एक्सप्रेशंस कैरी करने चाहिए, बट क्या गीता में ये बताया गया है कि वो कौन से इमोशंस हैं या कौन से कैरेक्टर्स हैं जिससे एक इंसान को हमेशा बच के रहना चाहिए?
2: भगवान गीता में कहते हैं, देयर आर 3 गेट्स टू हेल, त्रिविधम नरकस्येदं द्वारम नाशनम आत्मन। आत्मा को नरक के द्वार में घसीटने वाले कौन से 3 द्वार हैं? कामम काम, लस्ट, क्रोधम एंगर, लोभम ग्रीड। तस्मात एतत् त्रयम् त्यजेत्, इसलिए इन 3 को छोड़ना आवश्यक है। तो ये 3 वास्तव में वेग हैं। वेग मीन्स इट इज अ पुशिंग। जब किसी को खांसी आए वो रोक नहीं सकते उस खांसी को, किसी को उल्टी आए वो उसको रोक नहीं सकते, कॉल ऑफ नेचर, यू कैन नॉट स्टॉप इट, दिस इज ऑल अर्ज। तो उसी प्रकार मानसिक रूप से भी जब मानसिक बीमारी और रोग हो तो काम क्या है? मन का वॉमिट है। क्रोध क्या है? ये मन की उल्टी है। लोभ द्वेष ये सब मन से प्रकट हुआ प्रदूषण है। तो इसलिए यहां पर हम देखते हैं कि दुर्योधन के अंदर क्या था। दुर्योधन, वन वॉज ऑलवेज फाइटिंग फॉर द रॉन्ग कॉज। और दुर्योधन का कॉज क्या था? बस मेरे आगे कोई न जा सके। सो दुर्योधन वॉज द्वेष और एनवी पर्सोनिफाइड। द्वेष अर्थात मुझसे अच्छा कोई नहीं हो सकता, है कि नहीं? तो दुर्योधन हमेशा पांडवों को देखकर जलता रहता था। वैसे ही रावण, काम के प्रतीक, इतनी रानियां थी लेकिन सीता के पीछे इतने कामुक हो गए। प्रसिद्ध लंकेश्वर राक्षसेंद्र लंकाम प्रयच्छ भवसादुगच्छ। उनको मारीच ने कहा कि भाई इतने करोड़ों की संख्या में आपके पास रानियां हैं, भवसादुगच्छ भाई अपने 10 सर बनाए रख के वापस जाइए लंका। कहां मुझे भेज रहे हो और मुझे भी परेशानी में डाल रहे हो, खुद भी परेशान होने वाले हो। तुम स्वेशु दारेशु रमस्व नित्यम, अपने पत्नियों के साथ प्रसन्न रहिए। राम सभार्याम रमताम वनेशो, राम को अपनी पत्नी के साथ प्रसन्न रहने दीजिए। ही वॉज गिवन दिस एडवाइस। तो ऐसा नहीं कि हमारे रावण के पास भोग के साधन कम थे, भोग के साधन होते हुए भी उनके अंदर जो काम वासना थी ये एक वेग था, उस चक्कर में वो फंसे उसमें। तो इसलिए जब हम धर्म की बात करते हैं, रिलीजन की बात करते हैं, तो जैसे अगर कोई अपने बच्चे को खिला रहे हैं पिला रहे हैं, इसमें कोई लज्जा वाली बात नहीं, ये संतान धर्म है। अगर कोई पति पत्नी एक दूसरे को विश कर रहे हैं बर्थडे पर, एनिवर्सरी पे, तो ये उनका धर्म है। और अगर कोई शरीर को स्वस्थ रखने के लिए जॉगिंग कर रहा हो, एक्सरसाइज कर रहा हो, योग कर रहा हो, इसमें कोई लज्जा वाली बात नहीं, ये भी धर्म है, शरीर के प्रति धर्म है। अगर आप कमाने के लिए बिजनेस कर रहे हो, 14-15 घंटा काम कर रहे हो, तो इसमें भी कोई लज्जित नहीं होता, ये भी धर्म है। अगर आप, अभी शादी का सीजन चल रहा है तो लोग यहां वहां शादियों में अपना जा रहे हैं गिफ्ट्स लेकर, तो वो भी एक सामाजिक स्वीकृति का एक धर्म है। वैसे ही आपका जॉब में अगर बॉस आपको बोले ये करो वो करो, ये आपका डेडलाइन है, ये प्रेजेंटेशन है, इट्स ऑल पार्ट ऑफ योर करियर, वो भी धर्म है। तो जब इतने सारे धर्म निभा सकते हो तो रिलीजन क्या है? वो ईश्वर के प्रति निभाया हुआ धर्म है, उसी को सनातन धर्म कहते हैं, जिसको अंग्रेजी में रिलीजन कहे जाते हैं। तो एग्जैक्ट रिलीजन शब्द जो है वो थोड़ा रेस्ट्रिक्टेड हो जाता है, लेकिन ये समझना कि अगर हमारा शरीर के प्रति, पति पत्नी के प्रति, बच्चों के प्रति, घर के प्रति, गाड़ी के प्रति, अब गाड़ी भी एक दिन ना धोए तो वो भी गंदा हो जाता है, उसके प्रति भी बड़ा धर्म है। ये सब धर्म को लेकर अगर आपने ये सोचा कि अगर एक और धर्म हो आत्मा का परमात्मा के प्रति, उस परमात्मा के प्रति धर्म को निभाने को ही कहते हैं सनातन धर्म। इसीलिए घरों में पूजा घर होते थे, पूजा की पद्धति होती थी। ये पूजा जो है ये एक रिचुअल नहीं है, ये एक ऐसा तरीका है जिससे हम समझें कि प्रकृति को देखने के पहले ईश्वर को देखकर हम दिन शुरू करें, और उनके साथ संबंध स्थायी स्थापित करने के बाद बाकी सब अलग अलग आइडेंटिटीज को अपनाए.
1: ओके,
2: दैट इज योर अनचेंजिंग आइडेंटिटी. ईश्वर सनातन, आत्मा सनातन. आत्मा और ईश्वर के बीच संबंध सनातन. इसी संबंध को, इसी ड्यूटी को, इसी कर्तव्य को कहते हैं धर्म. और क्योंकि आत्मा भी सनातन है, ईश्वर भी सनातन है, उसका नाम है सनातन धर्म.
1: अब इसमें यहां पर मुझे एक कनेक्शन दिखाई दे रहा है बिटवीन कर्मा, कि मेरे कर्म से मुझे क्या मिल रहा है, एंड हार्डवर्क, कि मेरे कर्म से मुझे क्या मिल रहा है. श्री कृष्ण के हिसाब से गीता में उन्होंने क्या बताया है कि कितना परसेंट, या फिर हम कितना रिलाय करें अपने पिछले पुराने कर्मों पे, डेस्टिनी पे, किस्मत पे, कि ये मेरी किस्मत का लिखा है, ये तो मेरा फल है, ये तो मुझे मिलना ही है, या मुझे इतना ही मिलना है, मुझे इससे ज्यादा मिलना है, मैं क्या डिजर्व करता हूँ, या फिर अपनी मेहनत पे, मेरे एक्शंस पे, मेरे डेली एफर्ट्स पे, जो मेरे अभी फिलहाल जितना मेरे कंट्रोल में है. ये बात हम समझ गए हैं कि हमारे कंट्रोल में नहीं है, सब कुछ हमारे से करवाया जा रहा है, पर अपनी इंटेंशन के थ्रू जो मैं करना चाह रही हूँ या जो भी मैं कर रही हूँ उस पे मैं कितना डिपेंड करूं, और कितना मैं अपने सिर्फ कार्मिक रिजल्ट्स पे डिपेंड करूं, ये कैसे पता चलेगा?
2: भगवान कहते हैं गीता के चौथे अध्याय में, कर्मणो यपि बोधव्यम, बोधव्यम च विकर्मण, अकर्मणश्च बोधव्यम गहना कर्मणो गति.
1: अर्थात
2: कृष्ण कहते हैं कि तीन कर्म के पहलू हैं, कर्म, विकर्म और अकर्म. मैंने रोड क्रॉस करते समय रेड सिग्नल देखा और सोचा कि कोई तो देख नहीं रहा है, चलो क्रॉस करते हैं. तो वो हो गया विकर्म, लॉ ब्रेकर. फिर मैंने कहा नहीं नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए, जब ग्रीन होगा तभी क्रॉस करेंगे. ग्रीन होता है, वॉकिंग का सिग्नल आता है, तब मैं वॉक करता हूं. दैट इज लॉ अबाइडर, दैट इज कर्म. फिर मैं सोचता हूं अरे बहुत ट्रैफिक बढ़ गई, ट्रैफिक पुलिस बेचारी बहुत जूझ रही है, हम उनको असिस्ट करते हैं. तो कई मेंबर्स ऑफ सिविल सोसाइटी में भी लोग जा जाकर ट्रैफिक पुलिस को हेल्प करते हैं. तो आई एम लॉ सपोर्टर, इस शब्द को कहा गया है अकर्म. तो एक है जो टैक्स चुराता है, एक है टैक्स भरता है, और तीसरा है खुद IRS ऑफिसर है. तो सरकार के सबसे निकट कौन है? तो इसलिए भगवान कह रहे हैं मैं हर जीव को बिना UPSC दिए एक अवसर दे रहा हूं कि या तो वो सरकार के नियमों को उल्लंघन करे, समय पर नियम पालन करे, या फिर मेरे सरकार का एक भाग बन जाए.
1: तो रियल लाइफ में सरकार का भाग, यानी कि भगवान का, ईश्वर का, प्रभु का भाग कैसे बना जाता है?
2: भक्त बनना.
1: भक्त बनना.
2: ये कर्म का सिद्धांत लागू कैसे हो रहा है, तो इसके पीछे आपको ये त्रिकोण समझना आवश्यक है. यू हैव टू अंडरस्टैंड द ट्रायंगल. जीव अर्थात आत्मा, ईश्वर अर्थात परमात्मा, और प्रकृति अर्थात नेचर, ये तीनों के समन्वय से हर कार्य हो रहा है. तो ये है तीसरा सहिष्णुता.
1: अच्छा,
2: इसको कहते हैं परोत्कर्ष सहिष्णुता. परोत्कर्ष सहिष्णुता अर्थात दूसरों के सफलता को सहन करना. आप चाहे कितना भी प्रयास करें लेकिन एक स्तर पर ही पहुंच जाएं, लेकिन कोई और आपसे कम प्रयास करके कहीं और निकल जाए और आप सोचते रहो ये कैसे हो गया. सो यू हैव टू टॉलरेट दैट, नोइंग दैट आई एम नॉट द ओनली डूअर. अभिमान शून्य होने के लिए प्रथम पड़ाव यह है कि समझना कि आई एम नॉट द ओनली डूअर, आई एम नॉट द ओनली स्टार्टअप फाउंडर, और दो भी हैं.

0: इच्छा को तुरंत ईश्वर स्टडी करते हैं, सुनते हैं, और फिर फ्रैक्शन ऑफ अ मिलियन सेकंड में वो देख लेते हैं कि भाई इस समय इस व्यक्ति ने जिसने इच्छा की, कई पिछले लाखों लाखों जन्मों में जो कर्म अर्जित किए हैं उसके अनुसार अभी इस मोमेंट पर उसके पास कार्मिक बैलेंस है क्या इस इच्छा को पूरी करने के लिए. डज ही हैव द कार्मिक एसेट्स क्रेडिट्स टू रेज हिज राइट हैंड. वो सब क्षण भर में देख लिया और उन्होंने कहा है. तो ईश्वर फिर प्रकृति को निर्देश करते हैं टू ऑल द सेल्स विद इन द बॉडी एंड देन फिर मैं हाथ उठा पाता हूं.
1: इफ वी डोंट हैव इनफ क्रेडिट्स कैन वी कन्विंस गॉड.
0: उसी को तो पैरालिसिस कहते हैं. उसी लिए तो डॉक्टर भी कहते हैं अब भगवान ही बचा सकता है. कौन सा डॉक्टर ऐसा है जो बोलेगा मैं भगवान हूं और किसी को मैं हर परिस्थिति से बचा सकता हूं. तो इसीलिए आज आप बोल पा रहे हो, मैं बोल पा रहा हूं, और कहीं अहंकारवश अगर लगने लगा ये मेरी वाणी है, अरे अंदर के जो वॉइस बॉक्स की एक एक पेशी इतनी नाजुक है, और जब वॉइस लॉस होता है तो बड़े बड़े सिंगर का आइडेंटिटी क्राइसिस हो जाता है. आज हमको लग रहा है मुझे इतना डेटा याद है, इतना सब कुछ याद है, डिमेंशिया हो गया. वही व्यक्ति अपने ही बच्चे को देखकर बोलेगा भाग यहां से घर से, और कितना बड़ा शौक लग जाता है लोगों को कि अरे मेरी माता ने पिता ने मुझे घर से बाहर भगा दिया चिल्लाकर बुढ़ापे में. क्यों? बीमारी के कारण. व्यक्ति वही है लेकिन अब ईश्वर ने कहा बेटा अभी पिछले कई जन्मों के अकाउंट को देखकर 67 की एज पे आपका जो है मेमोरी लॉस होगा. तो फिर व्यक्ति चाहे दुनिया के कितने भी डॉक्टरों को जुटा ले वो कुछ नहीं कर सकते. इसलिए हेल्थ इंडस्ट्री का आप देखिए कितना टर्नओवर है, इंश्योरेंस इंडस्ट्री का देख लीजिए. ये सब इस बात को सिद्ध करता है कि वो सब स्वीकार कर रहे हैं कि हम सब के ऊपर एक ईश्वर है जिसकी इच्छा के अनुसार वो वास्तव में प्रकृति चलती है. तो इसका मैं उदाहरण देता हूं. मान लीजिए मुझे प्रिंट आउट लेना है, मैं कंप्यूटर या लैपटॉप को बोलूं चल प्रिंट निकाल, तो वो नहीं निकालेगा. तो उसमें मुझे डायरेक्ट करना पड़ेगा, प्रिंट दबाना पड़ेगा. जब मैं प्रिंट कमांड दूंगा वो प्रिंट कमांड जाएगा कंप्यूटर को, फिर कंप्यूटर से जो कनेक्टेड प्रिंटर है वो प्रिंटर को कमांड कंप्यूटर के थ्रू जाएगा. मैं प्रिंटर को देख के यूं यूं करूं चल चल बेटा चल चल प्रिंट दे वो नहीं होगा. तो अगर मुझे लग रहा है कि मैंने अपना मुट्ठी उठाया, ये अहंकार, इसमें हम लोगों को क्या हो गया, हम लोगों का एक ब्लाइंड साइटेड हो गए. कौन ऊपर है? ईश्वर जो परमिट कर रहा है, उसको हमने इक्वेशन से बाहर कर दिया. तो इसीलिए भगवत गीता में कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं कि अर्जुन तू कह रहा है मैं युद्ध नहीं करूंगा, लेकिन यहां युद्ध छेड़ने का इच्छा तो मैंने किया है. आपको लग रहा है ये तुम्हारा युद्ध है, लेकिन वास्तव में कुरुक्षेत्र की रणभूमि तो ऑपरेशन थिएटर है. मानव समाज पेशेंट है, दुर्योधन दुशासन जैसे ट्यूमर आ गए हैं, सर्जन मैं हूं, तुमको केवल सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट बनना है.
1: अगर श्री कृष्णा ने ये डिसाइड कर ही लिया था कि युद्ध होगा, और अर्जुन के मन में जब बार बार बार बार ये डाउट्स आ रहे थे कि मैं नहीं लड़ना चाहता, मैं अपने भाइयों को अपने कजन्स को किस तरह से उनके ऊपर हथियार उठा सकता हूँ, मैं उन्हें कैसे मार सकता हूँ, एंड ही वॉन्टेड टू डिसमिस द वॉर, वो वापस आना चाहते थे, तो वहां पर कृष्णा को कन्विंस करने की जरूरत क्यों पड़ रही थी? जब उन्हें पता था कि मैंने ही ये सब डिजाइन किया, ये तो होके ही रहेगा, तो अर्जुन चाहे जितना मर्जी चाह ले या जो मर्जी कर ले, करना तो उसे पड़ेगा ही. तो वहां पर ये सारी जो डिस्कशन, डिबेट और कन्विक्शन, कन्विंसिंग, ये सब क्यों हो रहा था?
0: हम लोग सभी की एक ही संपत्ति है,

0: भगवान कहते हैं मैंने आपको एक ही शक्ति दी है, इच्छा शक्ति। जितने भी आध्यात्मिक परिवेश में ग्रंथ, मंदिर, सत्संग, कथाएं सब चल रही हैं, ये सभी केवल एक सूत्र के ऊपर काम कर रही हैं। टेम्पल इज देयर ओनली फॉर वन पर्पस, प्यूरिफाइंग इंटेंशन। मेडिटेशन, योगा, चैंटिंग, साउंड वाइब्रेशन, कनेक्शन, जब जीव ईश्वर के साथ जुड़ता है उस योग से इंटेंशंस गेट प्यूरिफाइड, इच्छाएं शुद्ध होती हैं। तो लोएस्ट लेवल पे व्यक्ति भय से काम करता है, फियर तमोगुण, उसके ऊपर रजोगुण इच्छा, उसके ऊपर ड्यूटी कर्तव्य, उसके ऊपर प्रेम। प्रगाढ़ प्रेमेर ए स्वभाव आचार, निज दुख विघ्नादीर नौकरी विचार। स्केर्सिटी, इम्पेडिमेंट, डिस्कम्फर्ट, अनहैप्पीनेस, ये सभी रिश्तों में होता है, फिर भी रिश्ता चलता रहे, उसी को प्रेम कहते हैं। तो ये चौथा, इसको कहते हैं पर मत सहिष्णुता। दैट मीन्स हर जीव की जो असली संपत्ति है वो है उसकी इच्छा शक्ति। वो हम उस इच्छा शक्ति को जबरदस्ती छीन नहीं सकते। भगवान कहते हैं मैं पूरे ब्रह्मांड को चला लूंगा, लेकिन जीव के अंदर जो इच्छा है उसको दमन नहीं करूंगा। यहां तक कि जब सीता देवी का अपहरण हुआ, रावण ने सीता देवी को लंका में बंद किया, तो वास्तव में सीता जीव की भी प्रतीक है। जब जीव का ध्यान भगवान की सेवा से बाहर के किसी वस्तु जैसे स्वर्णिम हिरण की ओर आकर्षित हो जाए, तो पांच कर्मेंद्रियां, पांच ज्ञानेंद्रियां, दस सर वाले मन रूपी रावण आके उसे शरीर रूपी लंका में बंद कर देता है। अब उस आत्मा को उस शरीर से, उस भवसागर के बीच से निकालने के लिए भगवान के मन में भी संशय होता है कि ये सीता जानबूझकर छोड़ के गई है या किसी के वश में गई है। तो जब आपको किसी के साथ रिलेशनशिप का क्वेश्चन मार्क आता है कि वो व्यक्ति मुझसे बात करना चाहते हैं, संबंध बनाए रखना चाहते हैं या संबंध तोड़ना चाहते हैं, जब ऐसा संशय आता है तो आप स्वयं नेक्स्ट स्टेप नहीं ले पाते, आपको एक मिडिलमैन रखना ही पड़ता है कि आप थोड़ा पता लगाओ कि उसके मन में क्या है। इसलिए रामचंद्र जी ने भेजा हनुमान जी को कि जाके पता लगाओ कि सीता देवी कहाँ है, लेकिन मोर इम्पोर्टेंट, सीता देवी के मन में इच्छा क्या है। वो क्या स्वेच्छा से गई है या वास्तव में मेरे साथ संबंध बनाए रखना चाहती है और जबरदस्ती कोई लेके गया है। क्योंकि भगवान कभी किसी को जबरदस्ती अपने साथ संबंध बनाए नहीं रखना चाहते। तो इसलिए आज के समाज में पर मत सहिष्णुता बहुत महत्वपूर्ण है। टॉलरेटिंग अदर ओपिनियंस इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये ग्लास अपनी इच्छा व्यक्त नहीं कर सकता। जैसे मैं उठाऊंगा उठ जाएगा। स्मार्टफोन में जितना बटन दबाओगे, जो जो दबाओगे वैसा आपको रिजल्ट मिलेगा। तो आजकल गैजेट्स इस तरह से लोगों को रिजल्ट देते हैं कि जैसा बटन दबाओ वैसा आपको, इच्छा के अनुसार आपको प्रतिक्रिया मिलती है। तो लोगों की आदत बिगड़ गई है, एंड देयरफॉर पीपल थिंक बिकॉज आई कैन कंट्रोल गैजेट्स आई कैन कंट्रोल अदर पीपल ऑल्सो। बट गैजेट्स आर मेंट टू बी कंट्रोल्ड एंड पीपल आर मेंट टू बी लव्ड, बट पीपल आर ट्राइंग टू नाउ कंट्रोल पीपल। इसलिए भगवान गीता के अंत में कहते हैं अर्जुन को कि यथेच्छसि तथा कुरु। मैंने पूरी गीता सुना दी, लेकिन अब बॉल इज इन योर कोर्ट, युद्ध करो न करो आपकी इच्छा। तो इसलिए इस स्वेच्छा को भगवान कहते हैं स्वतंत्रता रत्न। लोग आजकल इतना पैशन में ज्वेलरी खरीद रहे हैं, डायमंड खरीद रहे हैं, ये रत्न वो रत्न, लेकिन सबसे बहुमूल्य रत्न क्या है? स्वेच्छा का रत्न, स्वतंत्रता रत्न। और किसी भी संबंध में हम दूसरे व्यक्ति के उस स्वतंत्रता को बनाए रखते हुए उसका सम्मान कर सकें, तब जाकर वो संबंध स्थायी रूप से चलेगा। इसको कहते हैं पर मत सहिष्णुता। तो कई बार आपके पति, पत्नी, बच्चे और बाकी संबंधियों और बाकी स्नेहिल मित्रों के बीच कई बार जैसा हम अपेक्षा करते हैं वैसा मत नहीं होता। अगर उन बहुमतों को हम सहन करने की क्षमता ना रखें तो वो संबंध बनाए नहीं रख सकते. वी हैव टू हैव अंडरस्टैंडिंग दैट वी आर लिविंग इन अ वर्ल्ड ऑफ डाइवर्सिटी एंड यूनिटी इन डाइवर्सिटी मीन्स देयर मे बी मल्टीपल वेज ऑफ एक्सप्रेसिंग थिंग्स बट अल्टीमेटली वी आर मूविंग इन अ कॉमन डायरेक्शन. तो इसलिए सबसे पहले हमने चर्चा की गीता में, वो है द्वंद्व सहिष्णुता, दूसरा वेग सहिष्णुता काम क्रोध इत्यादि पर, तीसरा परोत्कर्ष सहिष्णुता दूसरों की सफलता और दूसरों के भिन्न भिन्न प्रकार से जीवन के ऊंचाइयों को प्राप्त करते हुए देखकर भी हमें सहिष्णु होना है, और चौथा है परमत सहिष्णुता, चाहे दूसरे कैसा भी मत रखें लेकिन पांडवों के आपस में बहुत अधिक मतभेद थे. युधिष्ठिर ने बिना पूछे सबको दांव पे लगा दिया, मतभेद हुआ लेकिन उस मतभेद के बाद भी युधिष्ठिर को ही सभी ने राजा के रूप में स्वीकार किया. सो देयर मे बी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, देयर मे बी मतभेद, लेकिन मन भेद होने की आवश्यकता नहीं. तो इसलिए भगवद गीता में सभी दृष्टिकोण से देखा जाए तो आपको जीवन के समस्याओं का हल मिलेगा. लेकिन इसके लिए चाहिए कि जैसे हम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स सिस्टमैटिक तरीके से 8-8, 10-10 साल टीचर के अंडर पढ़े हैं, इसकी उपयोगिता के विषय में लोगों को जानकारी दे सकते हैं, लेकिन इसके आगे अगर गीता समझना हो तो सिस्टमैटिक तरीके से हमको इसे पढ़ना है, सीखना है और अपने जीवन में अप्लाई करना है. क्योंकि दिस इज जस्ट लाइक अ मेडिकल साइंस, एक दवाई के विषय में ज्ञान मिलने पर बीमारी ठीक नहीं होती, जब फिर उसको आप रेगुलर डोसेज में डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के अनुसार लोगे तब फिर उसका असर होगा. तो आज हम कह सकते हैं कि गीता की दवा कितनी प्रभावशाली है उसका हमने थोड़ा विज्ञापन कर दिया. अब वो दवा का और डिटेल और उस दवा को लेना वो आप सभी के हाथ में है.
1: तो आप भगवद गीता के ऊपर आधारित गौरंग दास प्रभु और गुंजन के मध्य में एक वार्तालाप सुन रहे थे. भगवद गीता पर यदि किसी को कोई प्रश्न या टिप्पणी हो तो आप उसे हमारे पास भेज सकते हैं ईमेल के द्वारा. हमारा ईमेल एड्रेस है vedvanibrisbane@gmail.com. आज के इस कार्यक्रम में हमारा साथ देने के लिए आप सभी को हार्दिक धन्यवाद. हरे कृष्ण.

आप सुन रहे थे कृष्ण कृपा श्रीमूर्ति ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा स्थापित अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ अर्थात इस्कॉन की ओर से प्रस्तुत कार्यक्रम वेदवाणी को, जिनमें हम आपकी सेवा में आध्यात्मिक, धार्मिक, सामाजिक और पारिवारिक उद्देश्य को लेकर आते हैं, हर रविवार को सुबह 8 बजे से और हर बुधवार को सुबह 5 बजे से आपके लिए।

बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।

0: आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है। मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता, लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करें प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660 0415-952-660।
1: हनी, ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
2: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आयरन फूड।
1: ऐसा क्या खास है वहाँ?
2: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
1: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
2: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड, सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818। दैट्स 3804-3818।

फायर एंट्स तुहाडे इलाके विच मौजूद हन। जे तुहानू लगदा है कि तुहाडे घर जां जायदाद विच फायर एंट्स हन तां इस दी सूचना दिओ। असी तुहानू फायर एंट्स दे इलाज लई मुफ्त किट भेजांगे। होर जानकारी लई फायर एंट्स क्वींसलैंड जां फायर एंट्स QLD खोजो जां 132 ANT यानी के 132-268 उते कॉल करो। ए सुनिया क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित है। ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन। वधेरे किफायती रिहायश की शुरुआत वधेरे घरां दी उपलब्धता नाल हुंदी है। इसे लई नवी क्वींसलैंड सरकार सूबे भर विच 98,000 तो भी वध नवे घरां दे निर्माण दा राह खोल रही है। असी होर घर जल्दी बनाउण